नमस्कार अंबाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 15 सितंबर 2026, दिन मंगलवार, भद्रपदा शुक्ल पक्ष चतुर्थी, 2083 विक्रम संवत। अंबाला में सूर्योदय होगा 6:07 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:29 पर। आपकी मेहनत और लगन और नए विचारों ने दुनिया को एक नई दिशा दी है। आप सभी प्यारे श्रोताओं को इंजीनियर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं।

महापुरुषों के वचन श्रवण करके जिन्होंने उस तरफ अपना मुख कर लिया, उन्हीं के हिस्से लोक परलोक का संवरना आ गया। वरना तो जिसको सबसे अच्छा युग मानते हैं, उसी सतयुग में भक्त प्रह्लाद जैसे को उसी के पिता ने होलिका का सहारा लेकर जलाने का प्रयास किया, और त्रेता जैसे युग में भी ककई का इस्तेमाल करके मंथरा चाल चलती रही।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

تویچو بوزان نمت اشاریہ صفر ریڈیو بدستہ ہم سفر زندگی ہوں

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, हमारे अगले प्रोग्राम की प्रतीक्षा करें।
1: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
2: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 7। आज यकीनी बातचीत करेंगे आज के आमंत्रित मेहमान श्रीमती नीरजा बख्शी के साथ। रिकॉर्ड एवं एडिट किया भारत सोपुरी ने, सहयोग कृष्णा का, स्क्रिप्ट एवं निर्देशन आर जे किरनी।
1: सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता 90.0 FM और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम घर परिवार में, जहां बात होती है रिश्तों की, एहसासात की और उन अनमोल बंधनों की जो हमारी जिंदगी को मायने देते हैं। कहते हैं घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है प्यार से, अपनापन से और रिश्तों की गर्माहट से। और आज का हमारा विषय है बहनों का प्यारा रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जो दोस्ती भी है, ममता भी है और सुकून भी। श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि कई खूबसूरत रिश्तों की पहचान है। एक समर्पित होममेकर, एक स्नेहमयी माँ और एक संवेदनशील बहन। घर की जिम्मेदारियों को मुस्कुराकर निभाना, बच्चों के लिए छांव बन जाना और रिश्तों को धागे की तरह सहेज कर रखना, ये हुनर हर किसी के पास नहीं होता। लेकिन जो आज हमारी गेस्ट है उनके पास ये सारे हुनर है। इन सभी भूमिकाओं को उसने सिर्फ निभाया नहीं बल्कि खूबसूरती से जिया है। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम घर परिवार में।
2: रेडियो वितस्ता के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं नीरजा बख्शी, मैं जम्मू से हूँ। मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है और जम्मू यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की है।
1: आपका हमारे घर परिवार कार्यक्रम में दिल से स्वागत है। बहनों के इस खास विषय पर आपके अनुभव और आपके एहसास सुनने के लिए हम सब बेहद उत्सुक हैं। घर की दीवारों में जो खुशबू ठहर जाती है वो अक्सर किसी औरत की ममता कहलाती है। रिश्तों को जो चुपचाप सींचती रहती है वही घर की असली ताकत बन जाती है। नीरजा जी, मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ। अक्सर कहा जाता है कि बहनें एक दूसरे की रूह का हिस्सा होती है, आपके हिसाब से इस बात का असली मतलब क्या है? क्या सच में बहनों के बीच एक ऐसा एहसास और जुड़ाव होता है जो शब्दों से परे होता है?
2: जी हाँ किरनी जी, वाकई में बहनें एक दूसरे की रूह का हिस्सा होती हैं। वो न सिर्फ साथ में खेलती कूदती हैं, बल्कि वो साथ में खाती पीती हैं, उठती बैठती हैं, हर छोटा बड़ा काम भी करती हैं। इसके अलावा वो छोटी छोटी बातों पर लड़ती भी हैं, लेकिन उनका प्यार इतना गहरा होता है, उनकी आपस की लड़ाई उनको याद नहीं रहती और न ही उनको एक दूसरे के खिलौने छीनने से फर्क पड़ता है। ये ऐसा प्यार है जो बिना किसी मतलब के एक दूसरे से किया जाता है। ये ऐसा प्यार होता है जहाँ माँ की डांट से एक दूसरे को बचाया भी जाता है।
1: नीरजा जी, आपने सही कहा, बहन का रिश्ता शब्दों से नहीं एहसासों से समझा जाता है, शायद इसलिए ये रूह से जुड़ा हुआ लगता है। आपसे मेरा अगला क्वेश्चन है, बचपन में बहन का साथ हमारे स्वभाव, आदतों और सोच को किस तरह आकार देता है? क्या वही बचपन की यादें आज भी इस रिश्ते की सबसे मजबूत नींव बनी हुई है?
2: बचपन में बहन ही सबसे ज्यादा करीब होती है, उसी के साथ खिलौने, कपड़े, जगह सब कुछ शेयर होता है और वही छोटी छोटी लड़ाइयों की वजह बनती है, पर ये लड़ाइयाँ कभी दूर नहीं करती।
1: आपने सही कहा, बचपन की वही छोटी छोटी बातें बड़े होकर भी रिश्ते को सबसे मजबूत डोर बन जाती है। अब आपसे मेरा अगला प्रश्न है, लोग कहते हैं कि बहन का रिश्ता दोस्ती से भी ज्यादा गहरा होता है, आपके अनुसार इस रिश्ते की वो कौन सी बात है जो इसे हर रिश्ते से अलग और खास बनाती है?
2: किरनी जी, आप जानती हैं, दोस्त हम जिंदगी में बाद में बनाते हैं, पर बहन बचपन से साथ होती है। दोस्त को हम अपनी कहानी बताते हैं, लेकिन बहन पहले से ही उस कहानी का हिस्सा होती है। दोस्त कभी कभी समझता है, पर बहन बिना समझाए सब कुछ समझ जाती है। दोनों खास होते हैं, लेकिन बहन का रिश्ता ज्यादा गहरा और पुराना होता है।
1: सच कहा। दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन बहन का रिश्ता जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और गहरा होता है। दोनों रिश्ते हमारी जिंदगी में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। आपसे मेरा अगला प्रश्न है, जिंदगी की मुश्किल घड़ियों, उलझनों और चुनौतियों में बहन की मौजूदगी क्या मायने रखती है? क्या वो सचमुच में एक ऐसे सहारे की तरह होती है जो बिना कहे समझ ले?
2: आप जानती हैं, जिंदगी में हर इंसान को किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जिसके साथ वो अपने दिल की बात बता सके, जिसके साथ वो अपनी सीक्रेट शेयर कर सके और जिस पर वो भरोसा कर सके। इसी तरह बहन के साथ सीक्रेट शेयर करना भरोसे को मजबूत करता है। जब आप अपनी बात बिना डर के कह सकते हैं, रिश्ता गहरा होता है। ये सीक्रेट्स सिर्फ बातें नहीं, एक दूसरे का भरोसा होती हैं। इसी भरोसे से बहन का रिश्ता मजबूत होता है। अब बात है मुश्किलों की। जब दुनिया समझ नहीं पाती, बहन बिना समझाए समझ लेती है। वो बस पास बैठकर भी हिम्मत देती है, कभी शब्दों से, कभी सिर्फ अपनी मौजूदगी से। मुश्किल वक्त में बहन सबसे बड़ा सहारा बनती है।
1: आपने सही कहा, मुश्किल वक्त में बहन का साथ सच में एक हिम्मत जैसा होता है जो संभाल भी लेता है और समझ भी लेता है। मेरा आपसे अगला प्रश्न है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बड़ी बहन बहुत केयरिंग होने के साथ साथ थोड़ी स्ट्रिक्ट भी हो जाती है। क्या आपको लगता है कि सख्ती के पीछे भी छुपा हुआ गहरा प्यार और जिम्मेदारी होती है?
2: जी हाँ, असल में बात ये है कि स्ट्रिक्टनेस और प्यार, ये दो चीजें अलग है। स्ट्रिक्टनेस इंसान को गलतियां करने से बचाती है और प्यार इंसान को एक दूसरे पर भरोसा करवाती है। बड़ी बहन शायद स्ट्रिक्ट इसलिए होती है क्योंकि उसको घर में जिम्मेदारी का एहसास बचपन में ही पैदा हुआ होता है। वो माँ की तरह हर बात पर नजर रखती है, पर बहन की तरह प्यार भी करती है। उसकी डांट में सख्ती कम, चिंता ज्यादा होती है। बड़ी बहन घर की वो छाया होती है जो बिना कहे सब संभालते रहना चाहती है। कभी टीचर बन जाती है, कभी दोस्त और कभी माँ का रूप ले लेती है। केयरिंग होना उसके दिल की नरमी का एहसास है और स्ट्रिक होना उसकी फिक्र का तरीका है।
1: आपने बहुत सही कहा, बड़ी बहन की सख्ती में भी एक अजीब सी मिठास होती है क्योंकि उसकी जड़ में सिर्फ और सिर्फ प्यार होता है। नीरजा जी, बहुत प्यार भरी बातें हुई, क्या आप संगीत सुनते हैं?
2: जी हाँ, मैं संगीत सुनती हूँ और संगीत से ही तो रूह को सुकून मिलता है।
1: तो फिर चलिए, आप अपना पसंदीदा गीत बताइए।
2: मेरा पसंदीदा गीत है अपने तो अपने ही होते हैं।
1: तो चलिए सुनाते हैं आपका पसंदीदा गीत, आपको और अपने श्रोताओं को।

0: आपसे मेरा एक और प्रश्न है। अक्सर देखा जाता है कि छोटी बहन बड़ी बहन की बात मानती है, उस पर भरोसा करती है और उसे एक मिसाल की तरह देखती है। इस आज्ञाकारिता के पीछे कौन सा भाव काम करता है?
1: किरणी जी, अक्सर देखा जाता है छोटी बहन शुरू से ही, बचपन से ही माँ के बाद अपनी बड़ी बहन को देखती है। वो हर काम अपनी बहन की निगरानी में करती है, हर छोटी बड़ी जिद अपनी बहन के सामने पूरी करती है। इसीलिए उसको ऐसा लगता है जैसे कि उसकी बहन कभी उसके लिए गलत नहीं सोचेगी, कभी उसके लिए गलत नहीं करेगी और ना ही कभी उसको गलत रास्ता दिखाएगी। यही कारण है कि छोटी बहन अक्सर आज्ञाकारी होती है। बचपन से ही बड़ी बहन को एक मार्गदर्शक की तरह देखती है। उससे लगता है कि वे कह रही है तो यही सच है और उसमें ही उसकी भलाई है। छोटी बहन बहस भी इसीलिए कम करती है क्योंकि उसके दिल में अपनी बहन के लिए बहुत ज्यादा भरोसा होता है। इसीलिए उसका आज्ञाकारी होना, बहन के लिए दिल में इज्जत होना और बहन पर विश्वास होना स्वाभाविक है।
0: आपने सही कहा, क्योंकि छोटी बहन का विश्वास ही इस रिश्ते को और खूबसूरत बना देता है। अब आपसे जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो ये है, कई बार ऐसा महसूस होता है कि बड़ी बहन बहन कम और माँ ज्यादा लगती है, किन बातों में वो माँ जैसी भूमिका निभाती हुई नजर आती है?
1: किरणी जी, आप जानती हैं, बच्चा जब छोटा होता है उसको सही गलत का अंदाजा नहीं होता और माँ अपने दूसरे कामों में व्यस्त होती है और बड़ी बहन अपना हक और अपना फर्ज बखूबी निभाती है। यही वजह है जब बड़ी बहन अपने छोटों को उनकी गलती बताती है और उनको गलत रास्ते पर चलने से रोकती है, तब बड़ी बहन में माँ की झलक दिखाई देती है। वो अगर डांटती भी है लेकिन वो साथ में संभालती भी है। वो अगर उसको कुछ गलत करते देखती है, वो उसको बिल्कुल उससे बताए बिना ही उसको उस गलती से दूर कर देती है। माँ की तरह जब बड़ी बहन अपनी छोटी बहन का ख्याल रखती है तो उसे लगता है कि शायद मेरी माँ भी इतने अच्छे से मुझे नहीं संभाल पाती। जब माँ पास ना हो तो बड़ी बहन ही संभालती है और जरूरत पड़ने पर माँ का रूप ले लेती है। बिना कहे और बिना दिखाए वो एक माँ ही बन जाती है।
0: आपने बहुत सही कहा कि कई बार सच में ऐसा लगता है कि बहन बहन कम और माँ ज्यादा होती है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि आज के बदलते दौर, दूरियों और व्यस्त जीवन शैली के बीच भी बहनों का रिश्ता किस रूप में बना हुआ है? क्या आज भी वही अपनापन, वही जुड़ाव महसूस होता है?
1: आज के दौर में जिंदगी पहले से काफी तेज हो गई है। सब अपनी जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं, फिर भी बहनों का रिश्ता वक्त की कमी से कमजोर नहीं पड़ता। रोज बात ना हो तो भी एक छोटा सा मैसेज और कॉल दिल को सुकून दे देता है। आजकल बहनें एक दूसरे की इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बन गई हैं। दूर रहकर भी पास महसूस करना, यही आज के दौर की बहनों के रिश्ते की खूबसूरती है।
0: आपने सही कहा कि दूरी चाहे कितनी भी हो जाए, बहनों के बीच की नजदीकियां कभी कम नहीं होती है, क्योंकि आज के बदलते दौर में एक फोन कॉल से हमें लगता है कि हम एक दूसरे के आसपास हैं।
1: किरणी जी, मुझे कुछ पंक्तियां याद आई हैं, क्या मैं आपके लिए वो पंक्तियां बता सकती हूँ?
0: जी हाँ, क्यों नहीं।
1: मेरी पंक्तियां इस तरह हैं, किताबों के पन्नों से पाक है फितरत उसकी, हर लफ्ज में बहती है सिर्फ मोहब्बत उसकी। किरणी की लेखनी में दिखता है बहनों का दुलार, सदा सलामत रहे मेरी बहन और उसका ये निस्वार्थ प्यार। सदा सलामत रहे मेरी बहन और उसका ये निस्वार्थ प्यार।
0: बहुत बढ़िया, आपने मेरे लिए भी शायरी बोली है। ये खाली शायरी नहीं है बल्कि तेरे लफ्जों में मुझे अपनी परछाई नजर आती है। तेरी अल्फाज सिर्फ शायरी नहीं, मेरे लिए वो बचपन की यादें भी है। तू शायरी सुनाए और मैं चुप रहूं, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि तुम मेरी आवाज का हिस्सा है। शायरी तो बहाना है, असल में तो मुझे रुलाना चाहती है। शायरी तो बहाना है, असल में तो मुझे रुलाना चाहती है। तेरे लफ्ज का असर देखो, दिल को सीधा बचपन में ले जाती है।

0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का घर परिवार कार्यक्रम जारी है। अब हम इसके अंतिम पड़ाव में पहुंचे हैं। मिर्जा जी, अभी आपने जो शायरी बोली, आपने मुझे बहुत ज्यादा भावुक कर लिया। चलिए अब आगे। मिर्जा जी, घर संभालते हुए हर रोज ये सोचना पड़ता है कि परिवार को कुछ ऐसा खिलाया जाए जो सेहतमंद भी हो, टेस्टी भी हो और ज्यादा वक्त भी ना ले। ऐसा कौन सी रेसिपी है जो आप अक्सर बनाती है, जो झटपट तैयार होती है और पौष्टिक भी होती है?
1: मैं अक्सर वेजिटेबल ओट्स चिल्ला बनाती हूँ। ये बहुत हेल्दी होता है और बनाने में भी आसान है। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप ओट्स, ओट्स का पाउडर, 2 चम्मच बेसन, 2 से 3 चम्मच दही, बारीक कटी हुई गाजर, प्याज, शिमला मिर्च और हरा धनिया। स्वाद अनुसार इसमें नमक चाहिए, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा अदरक। थोड़ा पानी डाल के इसका गोला बनाना है, फिर सब चीजों को मिलाकर डोसा जैसा गोला बना लेना है। गर्म तवे पर हल्का सा तेल लगाकर इस गोले को फैला देना है। दोनों तरफ से हल्का सुनहरा होने तक सेक लेना है। इससे दही या हरी चटनी के साथ गरम गरम खाने का स्वाद कुछ अलग ही आता है।
0: बहुत बढ़िया है ये रेसिपी। वाकई एक तो हेल्दी भी है और झटपट बनने वाली भी। आगे मिर्जा जी, बदलते मौसम में अक्सर सर्दी, खांसी और सोर थ्रोट की परेशानी हो जाती है। घर संभालते हुए आप जरूर कोई ऐसा घरेलू नुस्खा अपनाती होंगी जो आसान भी हो और असरदार भी। हमारे श्रोताओं के लिए कोई ऐसा नुस्खा बताएंगी जो तुरंत राहत दे सके?
1: मैं अक्सर हल्दी और शहद का नुस्खा इस्तेमाल करती हूँ, जो सर्दी, खांसी और गले की खराश में काफी राहत देता है। इसको बनाने के लिए आपको 1 चम्मच शहद चाहिए और 1/4 चम्मच हल्दी चाहिए। इन दोनों को अच्छी तरह मिलाकर दिन में 2-3 बार धीरे धीरे चाट लीजिए।
0: बहुत बढ़िया। वैसे भी हल्दी में सूजन कम करने की ताकत होती है और शहद गले को नरम करती है। ये नुस्खा इम्यूनिटी बढ़ाता है और सोर थ्रोट में भी जल्दी सुकून देता है। आखिर में मेरा क्वेश्चन है, अगर आपको बहन शब्द को एक खूबसूरत एहसास, एक परिभाषा या एक रूपक में डालना हो तो आप उसे किस तरह बयान करेंगी?
1: किरणी जी, मैं बहन को एक ऐसे एहसास के रूप में बयान करूंगी जो जिंदगी भर साथ चलता है। बहन वो होती है जो बचपन से आज तक आपके हर रूप को जानती है। वो डांट भी सकती है, हंसा भी सकती है और जरूरत पड़ने पर संभाल भी लेती है। पास हो या दूर, उसका प्यार हमेशा दिल के करीब रहता है। किरणी जी, मैं इसी एहसास को कुछ पंक्तियों के रूप में बयान करना चाहती हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आगे बढ़ूं?
0: जरूर जरूर, आप अपनी पंक्तियाँ हमें और हमारी श्रोताओं को सुनाइए।
1: रिश्तों की भीड़ में सबसे प्यारा नाम है बहन। घर की रौनक, घर का सुकून, घर की शान है बहन। मुश्किल में जो सबसे पहले साथ खड़ी मिलती है, हर दर्द की पहली पहचान है बहन।
0: बहुत ही अच्छी लाइनें, एक तो हार्ट टचिंग है और बहुत ही सुकून देने वाली लाइनें हैं।
1: किरणी जी, मैंने आपके बहुत से सवालों का जवाब दिया। मेरे मन में एक सवाल है, क्या मैं आपसे वो सवाल पूछ सकती हूँ?
0: जरूर, आप अपना सवाल पूछिए।
1: किरणी जी, जिस तरह मुझे सारी उम्र अपनी बहन की एक याद मेरे दिल दिमाग में रही, क्या कोई ऐसी याद है जो आपके दिल दिमाग में भी है?
0: जी हाँ, एक ऐसी याद है जो मैं हमेशा याद करती हूँ। क्यों? कारण उसका ये भी है, क्योंकि जो मेरी बहन है वो मेरे से छोटी है, मगर छोटी होते हुए भी उसने कई बार मेरा जो ध्यान रखा, जो मेरा ख्याल रखा, एक बड़ी बहन की तरह। एक बार का मुझे वाकई याद है कि मैं काफी बीमार हो गई, मुझे फीवर था, तो क्योंकि हम कश्मीर में रहते थे, वहां सर्दी बहुत थी, तो वहां ठंडा पानी तो पी नहीं सकते थे, तो उन दिनों हमारे घर में गैस नहीं थी। वो रात के 1 बजे 2 बजे उठती थी, वो चूल्हे पर गर्म पानी करती थी मेरे लिए, मुझे चाय पीनी होती थी, वो पूरी पूरी रात मेरे लिए जागती थी। वो कम से कम 4-5 दिन का समय हुआ गया जब तक मैं ठीक हो गई, वो रात को नहीं सोती थी। वो हमेशा जब तक मैं ना सोती थी वो सोती नहीं थी, और ये मुझे हमेशा याद दिलाता है कि कभी कभी वो छोटी होकर भी मेरी बड़ी बहन बन जाती है, और ये याद हमेशा मुझे याद आती है। जब भी मैं बीमार होती हूँ मुझे वो चीज याद आती है, वो मेरा कितना केयर करती थी। और मैं चाहती हूँ कि बहनों का प्यार ऐसा ही बना रहे और हमेशा एक मिसाल बने कि बहनें ऐसी होती है।
1: तुमने ये किस्सा सुनाकर मेरा दिल भर दिया। सच तो ये है कि तुम्हारा मेरे लिए लगाव तब भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही है। पर क्या तुम्हें पता है, मेरे पास भी एक ऐसी याद है जिसने मुझे हमेशा ये एहसास दिलाया कि मेरी बहन मेरे लिए क्या मायने रखती है। मेरी बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं रहा। जब मैं कॉलेज की जल्दी में खुद का ख्याल रखना भूल जाती थी, वो हमेशा मेरे पीछे खड़ी रहती थी। वे मेरे हाथ में खाना पकड़ाकर मेरे बाल बनाना लगती। उनका वो प्यार भरा रवैया और ये जिद के भूखे पेट नहीं जाना आज भी मेरे दिल का करीब है। वो सिर्फ मेरी बड़ी बहन नहीं, मेरे बचपन की सबसे मजबूत डाल थी। किरणी जी, मैंने कुछ ऐसी लाइनें उनके बारे में लिखी हैं, मैं थोड़ा वो बताना चाहती हूँ। वो बचपन की फिक्र, वो बहन का दुलार, मैं भूल जाती थी खुद को पर उन्हें था याद हर बार। न जाने दिया कभी भूखे पेट मुझे दहलीज के पार, कभी कंघी से बाल सवारे तो कभी निवालों से ढेर सारा प्यार।
0: आज हमारी जो गेस्ट थी, आपके साथ बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने बहनों के प्यार के ऊपर इतने अच्छे अच्छे हमें उत्तर दे दिए। इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का समय खत्म होता है। श्रोताओं, आज की इस प्यारी सी बातचीत में हमने जाना कि बहन का रिश्ता सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि जिंदगी का एक सुकून है, एक ऐसा साथ जो वक्त दूरी और हालात से परे होता है। बहन वो होती है जो हमारी मुस्कान के पीछे छुपा दर्द भी पढ़ लेती है और हमारी खामोशी में छुपे सवाल भी सुन लेती है। रिश्तों की भीड़ में जो सबसे खास होता है वो बहन का प्यार ही तो होता है, जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, वो बस दिल में महसूस होता है। सभी श्रोताओं से मैं कहना चाहती हूँ, आज अगर आपकी भी कोई बहन है पास या दूर, तो इस कार्यक्रम के बाद उसे एक बार जरूर याद कीजिएगा, उसको फोन कीजिए, क्योंकि बहनें जिंदगी में बार बार नहीं मिलती, वह किस्मत से मिलती है। इस खूबसूरत एहसास के साथ मैं किरणी आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे किसी नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।
1: मुझे भी इजाजत दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 7। आज के आमंत्रित मेहमान थे श्रीमती नीरजा बख्शी। कार्यक्रम रिकॉर्ड एवं एडिट किया भारत सोपोरी ने, सहयोग कृष्णा का, स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो

0: सभी को मेरी नमस्कार।
1: मैं आपकी रेडियो सखी नेहा धाकड़ लेकर आई हूँ आज आपके लिए एक नई कहानी जो सिखाएगी कि कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ इस कहानी को सुनकर आपको प्रेरणा मिलेगी। ये कहानी है एक बिजनेसमैन और एक नाव चलाने वाले नाविक की। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है कि उस गांव में एक फैक्ट्री लगानी है। फिर वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने एक नदी होती है और उसके सामने एक गांव होता है। अब उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक कि वो सड़क के रास्ते से घूमकर उस गांव में पहुंचे जिसमें करीब 8 घंटे लगेंगे क्योंकि डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है वहां पहुंचने का। दूसरा कि सिर्फ 20 मिनट में एक नाव में बैठकर उस नदी को पार करके गांव तक पहुंचा जाए। तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव में बैठने का फैसला लिया। वो नाव बहुत ही छोटी सी थी जिसमें एक तरफ वो आदमी बैठा था जो कि नाव चला रहा था और दूसरी तरफ ये बिजनेसमैन बैठा हुआ था। तो नाव में थोड़ी देर बैठने के बाद उस बिजनेसमैन ने नाव वाले से पूछा कि तुझे पता है कि तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े ही भोलेपन से हाथ जोड़कर कहा, नहीं साहब, मुझे नहीं पता आप कौन है। तो बिजनेसमैन बोला, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता क्या? हर दूसरे दिन मेरी फोटो आती है अखबार में। तो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है। मैं जब छोटा सा था तब मेरे पिताजी गुजर गए थे और अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया और तभी मेरा स्कूल छूट गया। ये सुनकर उस बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। ये सुनकर नाव वाले को बहुत बुरा लगा पर उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ दिन बाद तू जो ये सामने जमीन देख रहा है ना, यहाँ पर मेरी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी जहाँ पर हमारे ब्रांड की मिनरल वाटर बोतल बनेगी। नाव वाले को बात समझ नहीं आई, उसने कहा, क्या बनेगा साहब? तो बिजनेसमैन थोड़ा सा गुस्से में बोला कि हमारे यहाँ पानी की बोतलें बनेंगी, तेरे गांव में नहीं बिकेंगी लेकिन शहरों में बहुत बिकती हैं। अरे कभी तू शहर गया होगा तो तूने देखा होगा कि पानी की बोतलें रखी होती हैं दुकानों पर। फिर वो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं। फिर वो बिजनेसमैन उस पर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया, तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है, अरे ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। उसकी बात सुनकर उस नाव वाले को सच में लगने लगा कि मेरी जिंदगी किसी काम की ही नहीं। अपनी सोच की वजह से उसका नाव से ध्यान हटा और तभी नाव की टक्कर हो गई एक बड़े से पत्थर से जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा बहुत दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है और वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग मारने ही वाला था। तभी उसने उस बिजनेसमैन से पूछा, साहब आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन घबरा कर बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता। उसकी ये बात सुनकर नाव वाले को हंसी आ गई और वो बोला, अरे साहब, आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। ये सुनकर उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हाथ जोड़कर उस नाव वाले को बोला, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें वो दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने बोला, अरे साहब, आप घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना नहीं आता, मुझे डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है, आप मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने ना सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो इस कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें जिंदगी में कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसको अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कब, कहां, कैसे, किसकी जरूरत पड़ सकती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपके पास भी कोई आपकी स्वयं लिखित कहानी है तो आप हमें उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अगर वो कहानी हमें अच्छी लगी तो हम उसे अपनी आवाज़ देकर श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7056413010, 7056413010। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो सुन दे रहो अपने पसंद के गाने।

0: थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
1: यू आर लिस्निंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
2: घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो।
3: सब पर कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
4: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयाल बाग के राजा पधार रहे हैं।
3: 14वां श्री गणेश महोत्सव दयाल बाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अम्बाला छावनी में। तो बप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महाआरती का हिस्सा जरूर बनिए।
4: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं सायं 7 बजे
3: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
4: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 सायं 8 बजे
3: गणपति बप्पा मोरिया।
5: FM 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, और मैं हूं आपका रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। हर बार सुनाता हूं आपको मैं एक से लेकर एक बढ़कर कहानियां, कभी आपके दिलों में दस्तक देने की कोशिश करता हूं, कभी गुदगुदाने की कोशिश करता हूं, और कभी मेरा प्रयास होता है कि आपके दिल के अंदर छुपी हुई उस हंसी को आपके लबों पर लेकर आऊं। तो दोस्तों, लघु कथाओं की श्रृंखला के बीच में आप मुझसे कई बार कई प्रकार की कहानियां सुन चुके हैं और आगे भी सुनते रहेंगे। आज लेकिन जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये थोड़ी सी अलग हटकर कहानी है। इस कहानी के बीच में आप मुझसे सुनेंगे कि मक्खनबाजी इस तरह से भी हो सकती है। अब थोड़ा सा तो आप भी गौर कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे भी ऐसी आज किस मक्खनबाज की बात नरेश शर्मा लेकर आए हैं। तो आइए सीधा चलते हैं उस मक्खनबाज के पास और सुनते हैं उसकी हरकतें। तो हुआ यूं साहब कि एक कर्मचारी कंपनी के सभी कामों से बचता था, लेकिन बॉस को मक्खन लगाने में बड़ा माहिर था। वो बॉस के आदेश के अनुसार सभी काम करता था, ऑफिशियली काम को छोड़कर ना और भी बॉस के जितने निजी काम हुआ करते, जैसे उनके बेटे की कॉलेज की फीस जमा करना, बेटी की डांस कॉस्ट्यूम खरीदना, उनकी कार की सर्विस कराना, उनके बेटे का प्रोजेक्ट पूरा करना, यानी लगभग सब कुछ करता था। इसलिए जाहिर था कि वो बॉस का पसंदीदा था, उसे सभी प्रोत्साहन और इंक्रीमेंट समय से ही मिल जाते थे। और दूसरी तरफ बाकी कर्मचारी ऑफिशियली काम पूरा करने पर भी बॉस की डांट ही खाते रहते थे। एक दिन अचानक बॉस की मां के निधन की खबर मिली। सारे कर्मचारी बहुत उदास चेहरे के साथ उनके घर भागे, और हैरानी की बात यह कि ऐसे वक्त में वो बंदा बॉस के घर के आसपास नहीं दिख रहा था, जिसके बारे में हर कोई अलग अलग कयास लगा रहा था कि आज वो आदमी गैरहाजिर कैसे है इस मौके पर। अब अन्य कर्मचारियों ने माल्यार्पण से सुसज्जित वाहन की व्यवस्था की और बॉस की मां को शमशान ले जाया गया। लेकिन जब सब शवदाह गृह पहुंचे तो पहले से ही 16 शव बिजली से जलने के लिए कतार में भरे। प्रत्येक शरीर को जलने में लगभग 1 घंटा लग रहा था, यानी कि कुल मिलाकर सूर्यास्त से पहले दाह संस्कार संभव नहीं था। बॉस का चेहरा लाल हो रखा था, बाकी सब लोग बहुत परेशान थे। अचानक कतार में पड़े 16 शव में से दूसरा शव उठ के बैठ गया। वहां उपस्थित जितने भी लोग थे ना, सब डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। बाद में पूर्ण आश्चर्य के साथ पता चला कि यह कोई शव नहीं था, ये तो वही बंदा था। उसने तुरंत बॉस को बताया, श्रीमान माफी चाहूंगा, सुबह से आपके घर नहीं आ पाया, क्योंकि जैसे ही आपकी माता जी के देहांत का समाचार सुना और देखा कि सब आपके घर की तरफ भाग रहे हैं, तो ख्याल आया कि पहले यहाँ का भी इंतजाम देख लूं, और देखा तो पाया कि जब आप बॉडी लेकर आएंगे तो शाम तक मुश्किल से ही आपका नंबर आ पाएगा, तो आज बस आपकी खातिर सुबह से ही आपकी माताजी का नंबर लगा दिया। सर सुबह 8 बजे से ही लाश बनकर लेटा हुआ हूं। सब उसकी प्रतिबद्धता को देख कर ना दंग रह गए। और बॉस कभी उसको बड़े प्यार से देखता और कभी बाकी कर्मचारियों को खा जाने वाली निगाहों से। क्यों, कभी देखा है आपने ऐसा मक्खनबाज? और कैसी लगी आपको हमारी आज की मक्खनबाज पेशकश? हमें हमारे दूरभाष नंबर 7056413010 पर जरूर बताएं। जल्द ही मिलता हूं आपको एक और नई लघु कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

दोस्तों भोजन एफएम नमत आचार्य सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हूं भोजन रूजियो पनिन पसंदीदा बात।

जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, कतरा कतरा बह जाए और तुम देखते रहो, सुलगते रहो, सिसकते रहो, मिटते रहो, फना होते रहो। आज थर थराती रही मेरी रूह, रूह से मिलकर, इसलिए गीली हुई मेरी आंखें बरसों

दिल तो है अपने पास, पर तुम्हारे बिना है ये बहुत उदास। ये दिल लगता नहीं तुम्हारे बगैर, हम क्या करें। आज दिल में उमड़े हैं फिर से सोए हुए जज्बात, एक बस तुम्हें याद करके। दिल मासूम है, भटकता है, बहकता है और बेइंतहा तुम्हें याद करता है। अब के सावन में बर्फ पिघलते ही मेरे पतझड़ की वीरानी को दूर करने के लिए शायद तुम लौट आओगे, इस दिल का दर्द मिटाने के लिए।

लम्हे रुक गए। पानी का बहना अपनी रवानी और अपना रास्ता बदल रहे हैं।

इस कारवां में छूट गए मेरे अपने, अपने जो अब पराए हो गए। जीवन के पतझड़ के मौसम की तरह यूं ही गुजरता रहा। प्यार के मौसम देखे भी और खोए भी। अब हमारे अपने रास्ते ही अनदेखे। प्यार के मौसम देखे भी और खोए भी। अब हमारे अपने रास्ते ही अनदेखे।

छुप जाती है और अक्सर लौट आती हो तुम शामो सहर मेरी दुनिया में, छू जाते हो मेरी उम्मीदों को, पिघल जाते हो मेरे साथ इस बर्फीले मौसम में, अपने जज्बात कई हादिसात लिए। तुम खुशबू हो, रंगी नूर हो, भीगते मौसम में भीगती बारिश का एहसास हो, तुम मेरे हो।

ये वो एहसास है जो अक्सर मेरी दहलीज पे दस्तक देकर यूं ही चला जाता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। मैं जानता हूं सर्द मौसम की ठंडी हवाएं तुम्हें छूकर मेरी गली से गुजरती हैं शबरोज। मेरी अनदेखी अनसुई इन रास्तों की पहचान अब कौन कराए, जबकि इन अंधेरी राहों पे चलते चलते मैं अपनी पहचान अब

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सब पर कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
1: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयाल बाग के राजा पधार रहे हैं।
0: 14वां श्री गणेश महोत्सव दयाल बाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अम्बाला छावनी में। तो बप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महाआरती का हिस्सा जरूर बनिए।
1: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं साय 7 बजे।
0: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
1: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 साय 8 बजे।
0: गणपति बप्पा मोरिया।

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का प्रवाह। जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी। आज हम लाए हैं आपके लिए एपिसोड 3। इसका शीर्षक है हर घर जल कार्यक्रम और अब तक हुई प्रगति की झलक। जल जीवन मिशन, हर घर जल, समझो भी अपनाओ भी। जल जीवन मिशन और उसके सभी घटकों को समुदाय को सरल भाषा में समझाने पर केंद्रित है ये कार्यक्रम।
1: बिन जल ये जग जाएगा।
0: अरे पता नहीं स्वच्छता कहाँ रह गई, इतना लेट तो वो कभी भी नहीं होती थी। लगता है आज मुझे अकेले ही ये कार्यक्रम करना पड़ेगा।
2: रुको रुको सुजल, आ गई मैं।
0: अरे आ गई तुम, मुझे लगा कहीं पानी भरने तो नहीं चली गई।
2: पानी भरने? नहीं नहीं सुजल, कुएं हैंडपंप पर जाना हुआ बीता हुआ कल, अब तो है हमारे घरों में नल से जल।
0: हाँ सही कह रही हो तुम, पहले और अब में बहुत फर्क आ गया है।
2: मुझे आज भी याद है कि कैसे मेरे गांव में महिलाएं, बच्चियां और लोग सुबह से पानी के इंतजाम में लगे रहते थे ताकि बाकी काम समय पर पूरे हो सके।
0: सही कह रही हो, कितनी बार तो उन्हें दिन में दो दो चक्कर लगाने पड़ते थे ताकि पानी कम ना पड़ जाए।
2: और बच्चियों की पढ़ाई भी छोड़ जाती थी। यही नहीं, गंदे पानी के सेवन से बीमार होना तो आम बात हो गई थी।
0: पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा
2: सोचू मैं सोचू तेरा रंग कैसा।
0: वाह स्वच्छता, ये तो नया गाना बन गया।
2: सुजल महाशय, गाने का समय खत्म, कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए।
0: ओ हाँ हाँ, आप सभी को सुजल का
2: और स्वच्छता का नमस्कार।
0: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित कार्यक्रम प्रस्तुत है
2: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी।
3: उठा लो अपने हाथ, अंकल हो या आंटी सब आ जाओ अब साथ।
4: बचाना है पानी ये सबको रखना याद, खत्म हुआ एक बार न मिलेगा उसके बाद।
3: सब जानते हैं पानी कितना जरूरी है, इसको बचाना भी तो अपनी मजबूरी है, अपनी मजबूरी है।
4: छोटे बनकर पानी गिराना थोड़ा कम कर, पहले पेड़ लगाओ फिर नदी बचाओ, बारिश के पानी को सब जमा कराओ। सबसे पूछो अंकल
3: रेन वाटर हार्वेस्ट करा क्या?
4: नहीं करा है तो फिर क्यों खड़ा है?
3: आने वाला कल होगा अपना ब्राइट, बोलेंगे सब बात है मेरी राइट, फिर पानी पे ना होगी कभी फाइट, पानी होगा हर टाइम दिन हो या नाइट।
4: हाँ हाँ छोटे, दिन हो या नाइट
3: सब सुन लो मेरी बात।
5: रेन वाटर हार्वेस्टिंग से बारिश के पानी को बचा कर उसे पौधों के लिए, सफाई के लिए और बाकी सब कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जन शक्ति में ही जल शक्ति। जय हिंद।
2: सुजल, जल जीवन मिशन ने समय बदल दिया है। जल जीवन मिशन जिसकी शुरुआत 2019 में हुई थी, इसके तहत हर घर जल कार्यक्रम ने देश के करोड़ों ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाना शुरू कर दिया है।
0: हाँ, अब महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चियों को पानी ढोने के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ता।
2: लेकिन ये सब आसान नहीं था। कई लोग सोचते हैं कि जल जीवन मिशन बस पाइप बिछाने का काम है, जबकि सच्चाई ये है कि ये हर परिवार के लिए रोज साफ, सुरक्षित और पर्याप्त पानी पहुंचाने का संकल्प है।
0: जो पानी आज नल में दिख रहा है वो अपने आप नहीं आया, इसके पीछे पूरे देश की मेहनत और लोगों की भागीदारी है। अब जल जीवन मिशन 2.0 के तहत इससे 2028 तक बढ़ाया गया है ताकि हर घर तक पानी पहुंचे और हर गांव में जल योजनाओं का बेहतर संचालन, रखरखाव और सतत सेवा सुनिश्चित की जा सके। राहें खुद ब खुद बनेंगी, तुम बस कदम बढ़ाते चलो। होगा हर काम आसान, तुम मन में अलख जगाते चलो।
2: सही कहा, होगा आसान हर वो काम जो अब तक तुमको भारी था। जीत उसी की होती है जिसकी पूरी तैयारी थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश ने हर मुश्किल में काम किया। कहीं रेगिस्तान की गर्मी में, कहीं पहाड़ों में, आज हर घर और हर बस्ती तक नल से जल पहुंचाने का काम चल रहा है।
0: अरे क्या हुआ,
2: ये सब सुनकर किसी के भी आंखों में आंसू आ जाए। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, देश की लाखों महिलाओं और बच्चियों के सिर से आज पानी ढोने का बोझ उतर गया है। अच्छा, नल से जल मिलने के बाद हमारे गांव में और क्या बदलाव आया?
0: पहले पानी पी लूं, फिर बताता हूं। देखो स्वच्छ का सिर्फ पानी ही नहीं आया, गांव के लोग भी इस योजना से जुड़े हैं। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से लोग मिलकर इससे संभाल रहे हैं और हमारी माताएं बहनें इसमें आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
2: ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, ये क्या होता है, जरा अच्छे से समझाओ ना।
0: ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति यानी पानी समिति के लोग, जिनका गठन हर गांव में होता है और इस समिति में आदि महिलाओं का होना जरूरी होता है।
2: पर इनका कार्य क्या होता है?
0: चलो ये भी बता देता हूँ। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति यानी पानी समिति का काम है ये सुनिश्चित करना कि गांव में पानी की सप्लाई ठीक से चलती रहे। नल जल मित्र ऑपरेटर की मदद से मोटर, पाइपलाइन और टंकी का रखरखाव कराया जाए, लीकेज ठीक किए जाएं, पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच हो और हाँ, पानी के इस्तेमाल के लिए जो शुल्क है उसके लिए लोगों को जागरूक करना।
2: बाप रे, ये सब वो गांव वाले खुद करेंगे?
0: अरे नहीं, ये सब करने के लिए पंचायत उनकी मदद करती है, साथ में वे कुछ कार्यों को करने के लिए स्व सहायता समूह की दीदी की भी मदद ले सकते हैं।
2: अच्छा, और पंचायत सत्र पर सरपंच, प्रधान, मुखिया और पंचायत प्रतिनिधि के क्या काम होते हैं?
0: पंचायत स्तर पर सरपंच, प्रधान, मुखिया और पंचायत प्रतिनिधि पानी समिति के साथ मिलकर योजना का रखरखाव करते हैं ताकि लोगों का भरोसा बना रहे।
2: अरे वाह, अब समुदाय की भूमिका भी बता दो सुजल कुमार।
0: सच का समुदाय सबसे अहम कड़ी है, उनके साथ के बिना किसी भी योजना का रखरखाव और उसकी सततता कायम रखना बहुत मुश्किल है। इस योजना के लिए समुदाय और हर व्यक्ति का कर्तव्य है पानी समिति एवं पंचायत के साथ मिलकर कार्य करना। दूसरा, समय पर जल सेवा शुल्क देना। तीसरा, पानी बर्बाद न करना। चौथा, पानी के स्रोत की रक्षा करना एवं इससे बनाए रखने के लिए जल के पुनः भरण यानी रिचार्ज पर कार्य करना। और आखिरी, शिकायत छिपानी नहीं, तुरंत बताना और सरकार के साथ मिलकर समाधान भी ढूंढना।
2: जब हर व्यक्ति कहे ये योजना मेरी है, तभी योजना टिकाऊ होती है।
0: और इसलिए अब योजनाओं की जानकारी जैसे पानी की आपूर्ति, गुणवत्ता और रखरखाव को सार्वजनिक करने पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि हर व्यक्ति जानकारी के आधार पर अपनी भूमिका निभा सके।
2: ये तो बहुत अच्छी बात है, पर योजना में कुछ खराबी भी आती होगी, उसे कैसे ठीक करते हैं?
0: ऐसी स्थिति में ग्रामीण अपने गांव के सरपंच या पानी समिति के सदस्यों को बता सकते हैं। इससे चलाने के लिए एक ऑपरेटर भी होता है जिसे हम नल जल मित्र कहते हैं, वो भी छोटी मोटी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। बड़ी समस्या के लिए जिले स्तर पर स्थित DTU से संपर्क, उनसे मदद ली जा सकती है।
2: ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: इस मिशन ने अब तक क्या क्या प्रगति की है और जल जीवन मिशन 2.0 में क्या खास है, हमें बताएंगे श्री कमल किशोर सोन, जो जल जीवन मिशन के मिशन निदेशक है। चलिए उनको सुनते हैं।
6: नमस्कार साथियों, मैं कमल किशोर सोन, अपर सचिव एवं मिशन निदेशक राष्ट्रीय जल जीवन मिशन। रेडियो कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी के माध्यम से आप सभी से जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। चूंकि आज का यह एपिसोड जल जीवन मिशन पर केंद्रित है, इसलिए मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। साथियों, जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि भारत के हर ग्रामीण क्षेत्र में हर घर तक और गांव के आंगनवाड़ी व स्कूल जैसे संस्थानों तक पाइपलाइन के माध्यम से नल से साफ और सुरक्षित पीने का पानी पहुंचे। पिछले कुछ वर्षों में हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़े हैं। आज मिशन उस चरण में पहुंच चुका है जहां कई गांवों और पंचायतों में योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और अब उनका संचालन और रखरखाव सबसे महत्वपूर्ण विषय बन गया है। इसी क्रम में मैं आप सभी को यह भी बताना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन का दूसरा चरण लागू हो चुका है, जिसके अंतर्गत मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया है। इस नए चरण में जल जीवन मिशन अब नए सुधारों के साथ संचालित हो रहा है। अब हमारा ध्यान सिर्फ हर घर तक नल से जल पहुंचाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि यह सेवा नियमित, सुरक्षित और लंबे समय तक सतत रूप से बनी रहे। इसके लिए गांव के लोगों की भूमिका को और मजबूत किया जा रहा है। जल सेवा आकलन के माध्यम से गांव के लोग खुद अपनी योजना की समीक्षा करते हैं एवं पानी की उपलब्धता, गुणवत्ता और सेवा की स्थिति को समझते हैं। इसके बाद जिला स्तर की तकनीकी टीम यानी DTU डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल यूनिट की मदद से सेवा में सुधार की योजना तैयार करती है। DTU पंचायतों को रखरखाव एवं मरम्मत के कार्यों में भी मदद करता है। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत जन भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु संवाद कार्यक्रम के माध्यम से दो स्तरों पर सीख और अनुभव साझा किए जा रहे हैं। सुजल ग्राम पेयजल संवाद में ग्राम और ग्राम पंचायत अपनी अच्छी पहल और उपलब्धियां राष्ट्रीय स्तर तक साझा करते हैं, जिससे उन्हें पहचान मिलती है, उनके कार्यों को सराहा जाता है और देश के दूसरे गांव भी उनसे सीखते हैं। वहीं DC और DM पेयजल संवाद एक ऐसा मंच है जहां जिला प्रशासन अपने जिले के सफल उदाहरण और अनुभव साझा करता है, जिससे पेयजल से जुड़े प्रभावी समाधान और श्रेष्ठ कार्य पूरे जिले के साथ साथ अन्य क्षेत्रों तक भी पहुंचते हैं। वहीं DC DM पेयजल संवाद में जिला प्रशासन अपने जिले के सफल उदाहरण और अनुभव साझा करते हैं, जिससे पेयजल संबंधित जरूरी समाधान और बेहतर कार्यों को पूरे जिले और अन्य स्थानों तक पहुँचाते हैं। दोस्तों, जल जीवन मिशन केवल पाइप और टंकी लगाने की योजना नहीं है, बल्कि यह जन भागीदारी पर आधारित एक जन आंदोलन है। जब गांव खुद अपनी जल व्यवस्था को समझकर संभालता है, तभी यह लंबे समय तक टिकाऊ रहती है। इसलिए जल स्रोतों की सुरक्षा, गुणवत्ता बनाए रखना और समुदाय की भागीदारी इस मिशन के प्रमुख आधार है, ताकि पानी आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित बना रहे।
0: स्वच्छ का जैसे मिशन निदेशक श्री कमल किशोर सोन ने बताया, जल जीवन मिशन 2.0 में कई सुधार लाए गए हैं, जिनसे पानी की सेवा को नियमित, टिकाऊ और बेहतर तरीके से चलाया जा सके। सोचो, अभी तो देश के 15 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से जल आ रहा है। जब देश के सारे घरों में नल से जल आने लगेगा, वो भी नियमित स्तर, तो लोगों की जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी ना।
2: हाँ, लेकिन जो जल नल से आएगा उसको स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हम सब गांव वालों को ही तो निभानी होगी, ताकि कोई बीमार ना पड़े। कौन हंसा सुजल, तुमने सुना?
0: ये वही है दुष्का, तुम्हारी बातें सुनकर हंस रही है।
2: मैंने कोई मजाक की बात कही क्या?
0: अभी अभी तुमने क्या कहा?
2: क्या कहा?
0: यही कि जल को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी लोगों की भी होगी।
2: तुम बार बार हंस क्यों रही हो? तुम्हारे भोलेपन पर हंस रही हूँ। अगर तुम लोगों को साफ पानी की परख होती, उसका मैं तो पता होता, तो मैं कब की यहाँ से दूर जा चुकी होती। तुम लोग सोचते हो कि बस पानी आएगा तो सब ठीक, अगर पानी गंदा हो जाए तो बीमारी, अस्पताल, सब मेरी वजह से होगा। मैं दूषिका, पानी प्रदूषण की रानी।
0: ओ पानी प्रदूषण की रानी, अब तुम्हारा दौर खत्म।
2: इस बार हम तेरी एक नहीं चलने देंगे।
0: हमने ठान लिया है लोगों को साफ पानी का महत्व भी बताएंगे।
2: तो क्या अब तक लोगों के घर पानी नहीं आता था? ऐसा क्या बदलाव आ गया है?
0: हाँ हाँ बिल्कुल आता था, लेकिन जल जीवन मिशन में ये सुनिश्चित किया जाता है कि हर पेयजल स्कीम में स्रोत से आने वाले पानी को शुद्ध करने के लिए डिसइंफेक्शन यूनिट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था हो। क्लोरिनेशन, फिल्टरिंग और अन्य ट्रीटमेंट प्रक्रियाओं के माध्यम से साफ और सुरक्षित पानी की आपूर्ति हो सके।
2: पर पानी तो बाद में भी गंदा हो सकता है, इससे लोगों को कैसे पता चलेगा?
0: तुम्हें पता नहीं है, जल जीवन मिशन में पानी की गुणवत्ता की जांच बहुत जरूरी हिस्सा है। तुम्हें पता है इसके लिए हर गांव में 5 महिलाओं और दीदियों को फील्ड ट्रेनिंग किट यानी FTK से पानी की गुणवत्ता की जांच करना सिखाया जाता है। जरूरत पड़ने पर सैंपल या नमूना को लैब में भेजकर सत्यापित किया जाता है। जल जीवन मिशन के नए चरण में ऐसे महिला दीदी समूह को अब सुजलाम शक्ति का नाम दिया गया है।
2: सचिका मैडम और सुजल भाई साहब, लोग तुमसे ज्यादा मेरी बात मानते हैं। तुम लोग तो उन्हें कठिन कठिन टास्क देते हो, ये धो वो साफ करो, ऐसा रखो वैसा रखो। मैं उन्हें कहती हूँ छोड़ो हटाओ फेंको रहने दो, कोई चिंता मत करो।
7: लेकिन अब सब हमारी बात सुनेंगे। हम लोगों को बता रहे हैं कि अपनी छोटी छोटी आदतों से हम पानी के स्रोत को साफ रख सकते हैं,
0: क्योंकि शुद्ध पेयजल हमें बीमारियों से बचाता है, बच्चों को स्वस्थ और मजबूत बनाता है और घर का खर्च भी कम करता है। जब परिवार स्वस्थ रहता है तो दवा और इलाज पर होने वाला खर्च बचता है, जिससे पैसे बच्चों की पढ़ाई पोषण और घर की जरूरतों पर खर्च किए जा सकते हैं। इसलिए दुष्का महोदया, अब तुम अपना बोरिया बिस्तर समेटो।
2: ओह, ये जल जीवन मिशन तो सबको जागरूक बना रहा है। कोई बात नहीं, अभी जा रही हूँ लेकिन फिर आऊंगी। जिस गांव के लोग कमजोर पड़ेंगे वहाँ फिर पहुँच जाऊंगी मैं, देखना वो जरूर मुझे मौका देंगे।
0: जाओ जाओ, तुम्हारी अब कोई जगह नहीं।
8: चलो चलो सुने हम रेडियो की सुबानी, सच सुजल गांव की एक अनोखी कहानी।
9: हम पानी बना नहीं सकते, सिर्फ बचा सकते हैं। इसलिए हमारे पास एक ही रास्ता है, पानी चाहिए तो उसे बचाइए। लीकेज रोकें, पानी बचाएं। क्या आप जानते हैं मामूली लीकेज से ही हर महीने 1,000 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। यदि एक नल से हर मिनट 45 बूंद पानी टपकता है तो 3 घंटे में 1 लीटर से ज्यादा पानी बह जाता है। पानी की हर बूंद मायने रखती है। जल बचाएं, भविष्य बनाएं।
10: स्वच्छ सुजल यही है भारत का नारा न्यारा।
11: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी।
2: सुजल, क्या सचमुच लोग हमसे ज्यादा दुष्कर की बात मानते हैं?
0: नहीं सोचकर, थोड़ी सी लापरवाही और आलस के कारण हम अपने पानी के स्रोतों को गंदा कर लेते हैं और दुष्का की जीत हो जाती है।
2: अच्छा, तुमने बताया था कि जल जीवन मिशन में निर्माण के समय मुख्यतः सरकार और विभाग काम करते हैं समुदाय के साथ मिलकर, लेकिन निर्माण पूरा होने के बाद ये योजना चलाने की जिम्मेदारी गाँव के लोग कैसे संभालेंगे? योजना समुदाय पंचायत को कैसे और कब दी जाएगी?
0: ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। निर्माण पूरा होने के बाद कुछ दिन स्कीम को जांचने के लिए ट्रायल रन किया जाता है ताकि उसमें कोई कमी ना रह जाए। इसे कमीशनिंग कहते हैं। सब कुछ सही पाने के बाद गांव स्तर की योजना को पंचायत व समुदाय को सौंप दी जाती है और ये करने के लिए सरकार समुदाय के साथ मिलकर इस अवसर को जल अर्पण दिवस के रूप में मनाती है। ये ट्रायल रन कम से कम 15 दिन का होना जरूरी है।
2: जल अर्पण दिवस बड़ा प्यारा नाम है, इसका मतलब क्या है?
0: ये जानकारी हमें जल जीवन मिशन के मिशन निदेशक श्री कमल किशोर सोन दे रहे हैं।
6: मैं कमल किशोर सोन, अपर सचिव एवं मिशन निदेशक राष्ट्रीय जल जीवन मिशन। चलिए आज के इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि जल अर्पण दिवस क्या है। 73वें संविधान संशोधन और जन भागीदारी की भावना के अनुरूप जल जीवन मिशन में जब कोई जल आपूर्ति योजना पूरी होती है तो उसे संचालन और रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत और समुदाय को सौंपा जाता है। इसी जिम्मेदारी को उत्सव के रूप में स्वीकार करने के लिए जल अर्पण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, जल अर्पण दिवस उस गांव के लिए एक ऐतिहासिक दिन होता है जब सरकार और विभाग जल जीवन मिशन के अंतर्गत बनी ग्रामीण पाइप जल आपूर्ति योजनाओं को औपचारिक रूप से ग्राम पंचायत एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति और समुदाय को सौंपते हैं। इस दिन गांव का समुदाय अपनी जल व्यवस्था को गर्व, जिम्मेदारी और अपनापन के साथ स्वीकार करता है और उसे संभालने व सुरक्षित रखने का सामूहिक संकल्प लेता है।
0: जल अर्पण दिवस क्या अब समझ में आ गया? ये जानकारी जल जीवन मिशन के मिशन निदेशक श्री कमल किशोर सोन ने दी थी।
7: हाँ बिल्कुल, इस दिन का संदेश ये है कि अब पानी सिर्फ सरकार की योजना नहीं, ये पूरे गांव की जिम्मेदारी है। नंबर दो, सब मिलकर इसकी देखभाल करेंगे आज, कल और आने वाले वर्षों तक। लेकिन ये बताओ, ये कैसे जांचेंगे कि योजना अब हैंडओवर के लिए तैयार है? क्या क्या करना होगा?
0: योजना को गांव को सौंपने से पहले ये देखा जाता है कि पानी समिति बनी है या नहीं, क्या योजना को कुछ दिन चलाकर जांचा गया है, पानी सही है या नहीं, इसकी जांच हो चुकी है, नल जल मित्र और समिति को काम की जानकारी दी गई है, पूरे सिस्टम की जमीनी जांच हो गई है और सब जानकारी गांव में खुले में लगाई गई है। जल चौपाल करके गांव वालों को जोड़ा गया है और जल स्रोतों की सफाई भी हो चुकी है। जब ये

0: संरचनाओं पर हम पवित्र धागा बांधकर, जल बंधन धागा बांधकर सुरक्षा का संकल्प, हम अपने योजना एवं जल स्रोत की रक्षा करेंगे, साथ में जल संरक्षण की आदतों को अपनाई एवं उपाय भी करेंगे, और आखिरी इसी दिन योजना से जुड़ी सारे दस्तावेज पंचायत को हैंडओवर भी किए जाएंगे। ये ध्यान रहे इसे अपने स्थानीय संस्कृति के अनुसार मनाया जाए। इस दिन हर गांव को अपने माननीय सांसद एवं स्थानीय मंत्री, अन्य जनप्रतिनिधियों एवं प्रवासी ग्रामीणों को जरूर बुलाना चाहिए। इसके अलावा अभी जल जीवन मिशन के अंतर्गत हम जल उत्सव भी मना रहे हैं।
1: जल उत्सव, ये जल उत्सव आकर है क्या?
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने। सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत जल उत्सव को 3 स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है, ताकि हर व्यक्ति उससे जुड़ सके।
1: 3 सत्र, जरा आसान भाषा में समझाओ ना।
0: हाँ बिल्कुल। सबसे पहला राष्ट्रीय स्तर का जल महोत्सव, ये हर साल 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से 22 मार्च विश्व जल दिवस तक मनाया जाता है।
1: अच्छा, यानी पूरे देश में एक साथ पानी को लेकर जागरूकता और भागीदारी का माहौल बने।
0: बिल्कुल सही। इसमें देश भर में कार्यक्रम, संवाद, सम्मान समारोह और जन भागीदारी के आयोजन होते हैं, ताकि पानी को लेकर सामूहिक जन जागरूकता का माहौल बने।
1: और दूसरा सत्र कौन सा है?
0: दूसरा है राज्य स्तर का राज्य जल उत्सव यानी नदी उत्सव। इसमें हर राज्य अपनी नदियों, जल परंपराओं और स्थानीय संस्कृति के अनुसार कार्यक्रम आयोजित करता है।
1: मतलब हर राज्य अपने हिसाब से, अपनी पहचान के साथ जल उत्सव मनाता है।
0: हाँ, जैसे कहीं नदी के किनारे कार्यक्रम, कहीं जल संरक्षण अभियान, तो कहीं स्थानीय त्योहारों के साथ इससे जोड़ा जाता है।
1: और तीसरा सत्र?
0: तीसरा और सबसे अहम है गांव एवं पंचायत सत्र का लोक जल उत्सव।
1: ये तो सबसे जरूरी है, क्योंकि असली काम तो गांव में ही होता है।
0: सही कहा। ऐसे जल उत्सव में जल चौपाल भी होती है। गांव के लोग मिलकर अपनी जल योजना की समीक्षा करते हैं, और यदि कोई कमी हो तो उससे ठीक कर अपनी सेवा को और बेहतर बनाते हैं। पानी के स्रोतों की सफाई की जाती है, और सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि योजना को टिकाऊ बनाएंगे।
1: मतलब देश से लेकर गांव तक हर सत्र पर पानी को एक उत्सव, एक जिम्मेदारी और एक जन भागीदारी के रूप में जोड़ा गया है।
0: बिल्कुल। जल उत्सव का मतलब सिर्फ कार्यक्रम नहीं, बल्कि ये है जन भागीदारी से जल की जिम्मेदारी।
1: बिल्कुल। और हमने इसके लिए जल अर्पण दिवस के दौरान सम्मिलित गोरखपुर के माननीय सांसद श्री रवि किशन जी और राजगढ़ के सांसद श्री रोडमल नगर जी के साथ बात की। आइए जानिए क्या कहते हैं इनके बारे में।
2: धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी जी, धन्यवाद जल शक्ति मंत्रालय सीआर पाटिल साहब, धन्यवाद पूज्य योगी महाराज। एक ऐसी सोच जो मैं इसकी कल्पना कर सकता हूँ, बिकॉज मैं विलेज से बिलोंग करता हूँ। पानी जो आने वाले समय पे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि कम होता जाएगा, खत्म होता जाएगा धरती पर। अब उसको बचाना, उसको संजो करके रखना और वहां पर पानी की व्यवस्था, हर घर में नल से जल देने की व्यवस्था, ये बहुत बड़ी सोच थी। ये इम्पॉसिबल जैसा था, इम्पॉसिबल जैसा। लेकिन मैंने इसको पॉसिबल होते हुए अपने 6 संसदीय क्षेत्र में देखा। 2.25 लाख लीटर की टंकी लगी, ऑटो मशीन पर पानी हर घर में आ रहा है, कितनी खुशी थी। ये खुशी का कोई मापदंड नहीं।
3: जल जीवन मिशन का जो काम है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, हर घर नल से जल, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बहुत सराहना करता हूँ, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और राजगढ़ जिले में भी 1331 के लगभग गाँव ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत उन्होंने लिए हैं। ये ठीक है, कुछ व्यवधान रहे, उसकी वजह से कुछ लेट लतीफ हुई है, लेकिन बहुत ही प्रशंसनीय है। कुंडी बे गांव में तो 24x7 24 घंटे नल से जल प्रदाय हो रहा है, और वहाँ की जो

0: पद्धति को हमने देखा और वहां से जो हमने सीख ली वो भी बड़ी अनुकरणीय है। सामान्यतः लोग क्या करते हैं कि नल की टोटी निकाल देते हैं तो पानी व्यर्थ में बहता रहता है, लेकिन कुंडी में ग्राम पंचायत के लोगों की मैं सराहना करना चाहता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ, हर नल में उन्होंने टोटी लगा रखी है। और मैं एक दिन गांव में गया, मैंने टोटी चालू कर दी और लोगों की तरफ देखा तो लोग हंसने लगे। मैंने कहा बस मैं यही चाहता था कि टोटी बंद रहनी चाहिए और ये आप अपनी तरफ से हमारे साथ में खड़े हैं, ये बड़ा ही अच्छा एक वातावरण था, बड़ा अच्छा क्षण था। और अच्छा है जल जीवन मिशन के माध्यम से जैसा कुंडी में हुआ है वैसे अन्य गांव भी हो, और जल्दी से जल्दी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है हर घर नल से जल, इसको देने में हम सफल होंगे। जल जीवन मिशन का काम है गांव तक पानी पहुंचाना, लेकिन गांव का वितरण करना है तो ग्राम पंचायत का ही काम है, इसके लिए जन संगठनों को आगे आना पड़ेगा। देखिए जो काम करता है वहां गलतियां होती है, चूक भी होती है, कमियां भी रहती है, लेकिन बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का, और हम सब आपके साथ हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: गोरखपुर के माननीय सांसद और राजगढ़ के सांसद से बात अभी हमने अपनी श्रोताओं को सुनवाई, ये तो बहुत अच्छी बात बताई सुजल। ऐसा लगता है कि जल अर्पण दिवस एवं जल उत्सव संस्कृति और जिम्मेदारी का संगम है। इसके अलावा आओ अब ये जानते हैं कि जल जीवन मिशन में कौन कौन से डिजिटल प्रणालियां विकसित की है। श्री कमल किशोर सोन, जल जीवन मिशन के मिशन निदेशक।
2: पंचायत, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति और समुदाय अपनी पेयजल व्यवस्था को बेहतर ढंग से समझ सकें एवं चला सकें, इसके लिए भारत सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण डिजिटल प्रणालियां विकसित की है। उसमें सबसे प्रमुख है पंचायत डैशबोर्ड। पेयजल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पंचायत डैशबोर्ड बनाया गया है। इसके माध्यम से सरपंच और मुखिया जी योजनाओं की प्रगति, बनी हुई जल संरचनाएं, पानी की गुणवत्ता और प्रशिक्षण गतिविधियों की जानकारी देख सकते हैं और अपनी राय व सुझाव भी दे सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है सुजलाम डाटाबेस। इसके माध्यम से हर पाइप पेयजल योजना की जानकारी स्रोत से लेकर नल तक एक ही मंच पर उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जल आपूर्ति योजना और प्रत्येक गांव को एक विशिष्ट पहचान यानी सुजल गांव आईडी प्रदान की जा रही है, जिससे योजना की निगरानी, प्रबंधन और सेवा वितरण को और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाया जा सके। इसके माध्यम से आप अपने गांव की पेयजल योजना की जानकारी जल स्रोत से लेकर नल तक योजना के सभी घटकों को देख पाएंगे। योजना से जुड़ी अन्य आवश्यक जानकारियां भी इसमें उपलब्ध होंगी। तीसरा महत्वपूर्ण पहल है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसे हम निर्णय सहयोग प्रणाली कहते हैं, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि पानी रहेगा तभी हम उसका उपयोग कर पाएंगे। हर योजना का भविष्य उसके जल स्रोत की सुरक्षा पर निर्भर करता है। यह प्रणाली हमारे परंपरागत स्थानीय ज्ञान, जो सदियों से जल के साथ हमारे अनुभव से विकसित हुआ है, को आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साथ जोड़ती है। इस समन्वय से हमें बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिलती है, जिससे हम अपने जल स्रोतों को रिचार्ज कर सकते हैं और उन्हें सुरक्षित रह सकते हैं, ताकि आज नल तक पहुंचने वाला पानी कल और आने वाली पीढ़ियों तक भी बना रहे।
3: तैयारी पक्की, जिम्मेदारी सबकी, हम पानी बचाएंगे, योजना चलाएंगे, गांव का जल भविष्य बनाएंगे।
4: मैं आज समझ गई, सबसे ताकतवर गांव वो है जो पानी की रक्षा करता है। अब मेरा क्या होगा?
2: मैं कमल किशोर सोन, अपर सचिव एवं मिशन निदेशक राष्ट्रीय जल जीवन मिशन। साथियों, ग्राम पंचायतों को 16वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाले टाइड ग्रांट जल एवं स्वच्छता के कार्यों के लिए निर्धारित है। इस राशि का उपयोग गांव की पेयजल योजनाओं की देखभाल, मरम्मती, जल गुणवत्ता जांच, जल संरक्षण और लोक जल उत्सव, जन जागरूकता कार्यक्रम जैसे गतिविधियों में किया जा सकता है। इससे पेयजल योजनाएं लंबे समय तक सुचारू रूप से चलती रहेंगी और ग्राम पंचायत के सहयोग से लोगों को बेहतर पेयजल सेवा मिलती रहेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, पाइप जल आपूर्ति योजना से मिलने वाला साफ और सुरक्षित पीने का पानी केवल सुविधा नहीं है, बल्कि यह बेहतर स्वास्थ्य की बुनियाद है। इससे डायरिया, पीलिया और अन्य जल जनित बीमारियों में कमी आती है, बच्चों और गर्भवती माताओं का स्वास्थ्य सुधरता है और परिवारों का इलाज पर होने वाला खर्च भी घटता है। स्वस्थ परिवार मतलब कामकाज में कमी नहीं, आमदनी में नुकसान नहीं। इसलिए पाइप नल योजना के माध्यम से मिलने वाला साफ पानी गांव की तरक्की की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, चूंकि मानसून अपने चरम पर है और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि वर्षा जल का एक एक बूंद हमें बचाना चाहिए, मेरा सबसे आग्रह है कि पानी का समझदारी से उपयोग करें और बर्बादी से बचें। साथ ही जल संचय, जन भागीदारी, कैच द रेन अभियान के तहत वर्षा जल संचयन और जल स्रोतों के रिचार्ज की तैयारी करें ताकि हमारे पेयजल स्रोत साल भर टिकाऊ बने रहें। आइए हम सब मिलकर सरकार और समुदाय की साझा जिम्मेदारी निभाएं, अपनी पाइप पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त रखें, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाएं और यह सुनिश्चित करें कि हर घर तक सुरक्षित और नियमित पानी पहुंचता रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
1: पिछले अंक के जवाब श्रोताओं के नाम।
5: पिछले एपिसोड 2 के सवालों के जवाब हमारे पास जिनके आए, उनके नाम हैं हरजीत सिंह, सुषमा रानी, अश्विन, ये सभी अंबाला से हैं। इन सब ने सही जवाब हमें भेजे, जिनमें उन्होंने कहा गीला कचरा वेट वेस्ट, हरा डस्टबिन ग्रीन बिन। गीला कचरा वो होता है जो आसानी से गलकर खाद कंपोस्ट बन सकता है, जैसे रसोई का कचरा, सब्जियों और फलों के छिलके, बचा हुआ खाना, नॉनवेज वेस्ट, अंडे का छिलका, चाय और कॉफी, चाय पत्ती और कॉफी ग्राउंड, बगीचे का कचरा, पौधों की पत्तियां और फूल, गीला कागज, खाने में इस्तेमाल हुआ गीला टिश्यू पेपर या पिज्जा बॉक्स, सूखा कचरा ड्राई वेस्ट, नीला डस्टबिन ब्लू बिन। सूखा कचरा वो होता है जो गलता नहीं है और इसे रिसाइकल किया जा सकता, जैसे प्लास्टिक आइटम्स, प्लास्टिक की बॉटल्स, डिब्बे, कागज और कार्टून, रद्दी अखबार और पैकिंग बॉक्स, कांच यानी ग्लास, कांच की बॉटल या शीशे के टुकड़े, मेटल, कोल्ड ड्रिंक के कैंस, फॉइल पेपर और टीन के डिब्बे, कपड़े और जूते, पुराने कपड़े, जूते या चप्पल। और उन्होंने ये भी बताया कि हमें अपने शौचालय को साफ सुथरा रखने के साथ साथ प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग या इस्तेमाल नहीं करते हैं और आसपास स्वच्छता का ख्याल रखते हैं।
1: इस अंक का सवाल, क्या होता है जल अर्पण दिवस, क्या आपके गांव में ये मनाया गया है? अरे सुजल, अगले अंक के बारे में भी तो कुछ बताओ।
3: अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे स्वच्छ भारत मिशन देश के हर गांव को स्वच्छ और एक गांव को ODF प्लस ग्राम बनाने हेतु क्या प्रयास कर रहे हैं और क्या रहेगी उसकी रणनीति। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और सुनिए स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी, केवल FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर।
1: अगले अंक तक आप सभी को हमारा नमस्कार।
3: नमस्कार।

आप सुन रहे थे हर घर जल कार्यक्रम और अब तक हुई प्रगति की झलक, जो जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित कार्यक्रम है। इसमें सुजल के किरदार को आवाज दी भरत सुपोरी ने, स्वचिका के किरदार को आवाज दी आरजे किरनी ने, दुशिका के किरदार को आवाज दी कृष्णा ने, सहयोग अन्नू का, रिकॉर्ड एडिट निर्देशन भरत सुपुरी का। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विस्तार की प्रस्तुति।

प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्य गोष्ठी एपिसोड 7। आज के आमंत्रित मेहमान है कवित्री श्रीमती इंदु शर्मा। कार्यक्रम रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट प्रस्तुतकर्ता व निर्देशन भारत सोफोरी।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। हाजिर हूं आज काव्य गोष्ठी का ताजा अंक लेके, जहां आज के आमंत्रित मेहमान से हम कविता पाठ तो सुनेंगे ही, साथ ही इनके जीवन के बारे में भी जानेंगे और सुनाएंगे इनके मनपसंद गीत भी। नारी सदा ही सम्मानीय रही है। संस्कृत के एक श्लोक का अर्थ है, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता ने आमंत्रण दिया है एक सशक्त नारी को, जो एक शिक्षा विद्वान भी है और साथ में कवित्री भी है, जिनका स्वागत मैं करना चाहूंगा इन पंक्ति। स्वागत है तुम्हारा शब्दों की रानी, कविता की तुम हो मधुरिम कहानी, भावों के सागर की लहरें हो तुम, हर दिल की पीड़ा का मरहम हो तुम। आज FM 90.0 रेडियो वितस्ता के स्टूडियो में आमंत्रित है श्रीमती इंदु शर्मा जी। स्वागत, अभिनंदन आपका आज के काव्य गोष्ठी कार्यक्रम में।
1: बहुत धन्यवाद भरत जी। FM 90.MHz रेडियो वितस्ता अंबाला के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दे इंदु जी, ताकि आपको वो अच्छे से जान सके, साथ ही ये बताएं आपके लिए कविता क्या मायने रखती है।
1: मैं इंदु शर्मा, बेसिकली मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से हूँ और आफ्टर मैरिज मैं यमुनानगर में रहती हूँ। पेशेवर मैं एक अध्यापिका हूँ और जैसे कि आपने पूछा कि कविता के मेरे लिए क्या मायने हैं, तो कविता मेरे प्राण है, मेरा जीवन है, मेरा सब कुछ है। कविता नहीं तो मैं नहीं। कविता, आपने पूछा कि कविता जब आप सोचती हैं या कविता लिखने का सोचती हैं, तो मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूंगी कि कोई भी कवि कविता को नहीं चुनता, कविता हमें कवियों को स्वयं चुनती है
0: जी।
1: तो ये ब्लेसिंग्स हैं जो ऑलरेडी आती हैं, हम खुद कहीं से भी उनको उपजाते नहीं है, वो हमारे पास ऑलरेडी आती हैं। और हाँ, उनमें हम ये अपनी भूमिका निभाते हैं कि हम उन लफ्जों को, उनको पिरोते हैं एक माला में, एक मोती की तरह उनको बांध देते हैं। ये ब्लेसिंग्स हैं जो आती हैं और आगे मैं उनको पिरो देती हूँ।
0: इंदु जी, आप एक शिक्षिका हैं
1: जी,
0: एक कविता सुनाइए जिसमें हम समझ पाए कि एक शिक्षिका कैसे उन बच्चों के कोमल मन को समझती है।
1: जी जरूर, मेरी एक स्वरचित कविता का भाव देखिए कि बच्चों को विदा करना कितना मुश्किल है। एक अध्यापिका होने के नाते हर साल बच्चों का एक नया, बच्चों को, नए बच्चों को पढ़ाना, उनको सिखाना, साल भर सिखाना, और जब एक रिजल्ट डे होता है तब बच्चों को विदा करना, तो उस समय जो मेरी मन के भाव होते हैं बींग अ मदर टीचर, तो वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी। सुनिएगा। अपनी झोली के महकते फूल किसी और को देना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी हर साल हर बार ये फर्ज निभाती हूँ। हाँ, मैं शिक्षिका ही नहीं, मालिन भी कहलाती हूँ। रंग बिरंगे प्यारे, कुछ बातुनी और कुछ न्यारे, झगड़ालू कुछ सौम्य से अद्भुत जिद्दी प्यारे, मेरी बगिया के सुंदर फूल, महके बैर घृणा सब भूल, जिन्हें सहेजा अति प्रेम से, बही हो रहे मुझसे आज दूर, कैसे भूल पाऊंगी, कैसे भूल पाऊंगी। कितना मुश्किल है ना, कितना मुश्किल है, पर फिर भी अपना फर्ज निभाऊंगी। खुशी खुशी कर विदा उन्हें, मैं नई पौध लगाऊंगी, संस्कारों के जल से सींच कर नए फूल खिलाऊंगी। हाँ हाँ, बेशक है मुश्किल, पर फिर भी मैं ये फर्ज निभाऊंगी, मैं ये फर्ज निभाऊंगी, तभी तो शिक्षिका ही नहीं मालिन भी कहलाऊंगी।
0: क्या बात, यानी कि आपने बच्चों का जो कोमल मन है उसको आप समझने की कोशिश करती हैं हर दम हर समय, ताकि आप उनको जो घर से परवरिश मिलती है
1: जी,
0: उस परवरिश में आप अपनी ओर से उनकी सोच समझ में बढ़ोतरी करती हैं।
1: जी जी।
0: इंदु जी, आपसे जानना चाहेंगे कविता लेखन और इस ऐतिहासिक जीवन की शुरुआत कब और कैसे हुई?
1: देखिए, बात उन दिनों की है जब मैं 5th या 6th में पढ़ती थी, तो हिंदी में मैंने कविताएं पढ़ी बहुत से लेखकों की, और एक थी कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के
0: जी।
1: इसके अलावा भी महादेवी वर्मा जी, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, निराला जी, कबीर दास जी, रहीम जी, उनके दोहे, इतनी सारी चीजें, मतलब उस छोटी सी उम्र में भी मुझे लगता था कि ये लोग कितने महान होते हैं कि इतना ऐसा कुछ लिखते हैं कि जो आज हम बीइंग अ स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं, तो एक उनके लिए एक अलग लेवल का ही सम्मान था और एक चाह भी थी कहीं ना कहीं कि क्या कभी कि ऐसे बुक मेरी भी कभी कभी कविताएं शायद कोई छोटा सा एक सवाल मन के किसी कोने में था, तो वही आज पनपा है और आज एक फूल बन के एक काव्य संग्रह के रूप में मेरे हाथ में है, जो अभी 2023 में ही प्रकाशित हुआ है। बुलाता है आसमान करके नाम है मेरे काव्य संग्रह का।
0: इंदु जी, मैं ये मानता हूँ कि जब हमने अपने जिंदगी में कोई भी लक्ष्य रखा है
1: जी,
0: उसका सपना देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सपने देखते हैं वही पूरे होते हैं
1: जी।
0: तो इस हिसाब से जब पहली बार आपका कविता संग्रह प्रकाशित हुआ
1: जी,
0: तो क्या भावना थी उस समय?
1: उस समय बस ये लग रहा था कि आजकल पांव जमी पर नहीं लगते मेरे।
0: हम इस बात पर भी आएंगे, बट उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कवि या कवित्री का दिल गहरा, कोमल और संजीदा होता है
1: जी,
0: क्या संगीत को भी उसी सहजता से लेते हैं आप?
1: यस एग्जैक्टली, संगीत तो मेरी प्राण है, जैसे मैंने आपको बताया कि कविता है तो इंदु है, तो संगीत भी ऐसा ही है। मेरा दिन की शुरुआत संगीत से और मेरे दिन का अंत नहीं बोलूंगी, क्योंकि जब मैं निद्रा में होती हूँ तब भी कहीं ना कहीं मेरे अवचेतन मन में वो संगीत, कुछ कविताएं, कुछ लफ्ज, कुछ कहानियां, कुछ दोहे, वो चलते रहते हैं।
0: आपने तो संगीत और कविता लेखन को आपस में जोड़ दिया
1: जी,
0: तो हम चाहेंगे कि आपका कौन सा ऐसा मनपसंद गीत है जो हम आपको और हमारे श्रोताओं को सुनाएं?
1: जी हाँ, वो गीत है मेरा, आजकल पांव जमीन पर नहीं लगते मेरे।
0: क्या बात है, आपने मेरे कहने से पहले ही आपने हमारे श्रोताओं के लिए इसको गुनगुनाया, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। आइए श्रोताओं, सुनते हैं इंदु जी का ये मनपसंद गीत।

0: इंदु जी, आपके जीवन में इंस्पिरेशन कौन रहा है और क्यों?
1: मेरे जीवन में इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद जी, क्योंकि उनके जीवन से जुड़ी उनकी शिक्षाएं और उनकी जो भी स्लोगन्स जो हम लोग पढ़ते हैं, उनकी जीवनी या उनके जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं, मैंने उनको बहुत पढ़ा है
0: जी।
1: और पढ़ा ही नहीं है, मैं उनको अपने जीवन में उतारा भी है और मैं मानती भी हूँ। उनकी एक कोट है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव। तो मैं उसको, मतलब मैं उसको फॉलो करती हूँ और कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स भी हैं
0: जी।
1: क्योंकि उनका जीवन देखिए बहुत ही सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। उन्होंने सोसाइटी के लिए इतना कुछ किया कि आज भी हम 12 जनवरी को नेशनल यूथ फेस्टिवल करते हैं और उनका जन्म दिवस खूब धूमधाम से मनाया जाता है पूरे हमारे इंडिया में
0: जी।
1: तो उनसे मैं काफी इंस्पायर्ड हूँ। और देखिए कोइंसिडेंस देखिए कि जब मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की या मैंने अपना JBT बीएड हायर एजुकेशन जो भी मैंने कंप्लीट किया, हर बार मुझे स्वामी विवेकानंद जी के क्लब में ही उसका पार्ट बनी हूँ। और जब अब मैं जॉब कर रही हूँ तो वो भी सेम स्कूल है, तो कहीं ना कहीं उनसे जुड़ाव, उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हर समय है और मैं खुद को बहुत सशक्त मानती हूँ कि उनकी ब्लेसिंग्स हैं। और शायद मैं इसी करके आज आपके सामने बैठी हुई हूँ और आपसे बातचीत कर रही हूँ।
0: मैं चाहूंगा कि जो आपने उनका एक कोट मेंशन किया
1: जी,
0: आप प्लीज उस कोट को दोबारा कहिए।
1: जी जरूर। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड।
0: सभी श्रोताओं और युवाओं को मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारी जिंदगी में लक्ष्य है, उस लक्ष्य को आप बनाइए और जब तक हम उसको प्राप्त नहीं करते, आप निरंतर उसके लिए काम करते रहिए। और मेरा विश्वास है कि जब हम उस काम को निरंतर करते रहते हैं तो उस लक्ष्य को हम प्राप्त करते हैं। बहुत खूब। और इंदु जी, यहाँ पर आप कोई कविता हमें, हमारे श्रोताओं को सुनाएंगे?
1: जी जी जरूर। मैं सशक्त हूँ, नारी हूँ, तो जाहिर सी बात है कि नारी के बारे में जरूर बोलूंगी
0: जी।
1: कि कोमल हूँ पर निर्बल नहीं, साहसी हूँ पर दुर्बल नहीं, लक्ष्मी हूँ और दुर्गा हूँ, हूँ शाश्वत रूपिणी शक्ति में, हूँ सहनशील और धैर्यवान भी, ओजस्वी और विदुषी भी मैं, मुक्त हूँ हर छल कपट से, ममत्व प्रेम का अथाह सागर हूँ मैं, भाव हूँ और अभिव्यक्ति भी हूँ, किरण पुंज सूर्य की चिरकाल से अभ्यासरत हूँ, कर्मशील प्रयासरत वचनबद्ध सृष्टि के सृजन में, हर दायित्व अपना निभाऊंगी, शनै शनै उभरूंगी मैं, शनै शनै उभरूंगी मैं, हर शय में यूं बिखरूंगी मैं, हो ये धरा या वो गगन चहु और होगा गान ये, हो ये धरा या वो गगन चहु और होगा गान ये, कोमल है तू निर्बल नहीं, साहसी है तू दुर्बल नहीं, कोमल है तू निर्बल नहीं, साहसी है तू दुर्बल नहीं, हाँ मैं सशक्त हूँ।
0: क्या बात है इंदु जी। मैं चाहूंगा कि इस कविता के माध्यम से जो आपने, जो संदेश आपने देना चाहा, मैं चाहूंगा कि इसी कविता को सामने रख के आप हमारी जो नारी समूह है
1: जी,
0: उनको
1: जी,
0: आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
1: उनके लिए एक बहुत ही सुंदर भाव है मेरा
0: जी,
1: जिसका शीर्षक है जज्बा बरकरार रखिए। कि हाँ आप खास हैं, बस यही एक जज्बा बरकरार रखिए
0: जी।
1: कि हाँ आप खास हैं, बस एक यही जज्बा बरकरार रखिए, गमों में भी मुस्कुराने का एक अलग अंदाज रखिए, गमों में भी मुस्कुराने का एक अलग अंदाज रखिए, किसी को हो या ना हो आप खुद पे एतबार रखिए और बेहिसाब रखिए, आप खुद पे एतबार रखिए और बेहिसाब रखिए, बेशक बहे आंसू आंखों से, बेशक बहे आंसू आंखों से, पर फिर भी मुस्कुराहट को अपने होठों का पहरेदार रखिए, पर फिर भी मुस्कुराहट को अपने होठों का पहरेदार रखिए, आप खास हैं, बस एक यही जज्बा बरकरार रखिए।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। और हमारा भी मकसद यही है, FM 90 भी हमेशा कोशिश करता है कि जो हमारी नारी शक्ति है उनको समय दिया जाए, उनको मौका दिया जाए, ताकि वो अपने समाज में जितना भी वो देते हैं उससे भी ज्यादा वो समाज को दे पाएं, अपने घर को दे पाएं, अपने बच्चों को दे पाए, और अगर हमारा युवा सक्षम है तो हमारा देश भी सक्षम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इंदु जी।
1: जी।
0: हम सबका जीवन और एक कवित्री का जीवन में साधारणतः आसपास क्या घटित हो रहा है, कितना आवश्यक है?
1: बहुत आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है जितना सांस लेना आवश्यक है। देखिए, समाज में, हमारे घर में, हमारे आस पड़ोस में जो भी घटित हो रहा है, उसको एक सच्चे लफ्जों में और उसको सही तरीके से आम आवाम के सामने लाना बहुत जरूरी है। और ये काम एक लेखक का ही है, एक कवि का ही है, क्योंकि वो अपने लफ्जों के जरिए ही अपनी चीजों को, अपनी बातों को समाज तक पहुंचाता है।
0: अपने शब्दों के जरिए वो लोगों तक अपनी
1: बात को पहुंचाता है। और बहुत जरूरी है ये,
0: यानी कि ऑब्जर्वेशन
1: बहुत जरूरी है।
0: मैं एक कलाकार हूँ, और कलाकार भी हमेशा जब भी वो घर से निकलता है वो ऑब्जर्व हर कोई चीज करता है, तभी वो अलग अलग किरदार निभा सकता है।
1: जी।
0: पर कवि या कवित्री इतने सारे किरदार निभाते हैं जो अनगिनत होते हैं, क्योंकि जहां पर उसका ध्यान जाता है और उसी पर वो लिखना शुरू करता है। जब रेडियो वितस्ता FM 90 के साथ आपका संपर्क हुआ
1: जी।
0: या हमारे साथ संपर्क हुआ
1: जी।
0: क्या एक कवि का मन वहां पर आया कि आपने क्या हमारे बारे में या हमारे FM 90 के बारे में भी कुछ लिखा?
1: यस ऑफ कोर्स सर, जैसे कि एक हुनर है मुझ में कि चेहरे के साथ साथ मैं लोगों के रूह को भी पढ़ लेती हूँ।
0: बहुत खूब।
1: तो आपसे मेरी सिर्फ बात ही हुई थी, अब तक मैं आपसे मिली नहीं थी
0: जी।
1: तो बस ये यमुनानगर से अम्बाला तक आते आते बीच रास्ते में बस ये कुछ ख्याल आए हैं।
0: अच्छा, इसका सृजन अभी हुआ है?
1: जी हाँ। तो सुनिएगा कि क्या गजब ख्वाब दिखाते हैं आप
0: जी।
1: कि क्या गजब ख्वाब दिखाते हैं आप, संघर्षरत लम्हों को भी खुशनुमा बनाते हैं आप, के संघर्षरत लम्हों को भी खुशनुमा बनाते हैं आप, विभिन्न प्रतिभाओं को वितस्ता के जरिए, विभिन्न प्रतिभाओं को वितस्ता के जरिए जनता से रूबरू कराते हैं आप।
0: क्या बात,
1: यूं ही थोड़े ना भरत जी कहलाते हैं आप।
0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे लग रहा है कि इससे बड़ा इनाम आज तक मुझे इस सफर में नहीं मिला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया जनाब।
0: इंदु जी, आप एक माँ है, शिक्षिका है
1: जी।
0: बच्चे आपके मन को कैसे अपने जैसा बना लेते हैं, कोई कविता इस संदर्भ में हमारे श्रोताओं को आप कृपया सुनाइए।
1: जी हाँ, जैसे कि मैं एक शिक्षिका हूँ और माँ भी हूँ, तो ये बात है उन दिनों की, मेरा छोटा बेटा काफी बीमार हो गया था, हॉस्पिटलाइज था
0: जी।
1: और काफी बीमार हो गया था, तो उस दौरान भी मुझे कुछ लव्स, कुछ भावनाएं उमड़ रही थी जिन्होंने मुझे चारों ओर से घेर रखा था, एक क्योंकि मैं एक अध्यापिका भी हूँ, तो मुझे अपना वर्क प्लेस भी देखना था, वहां भी बच्चों को देखना है, और एक मेरा अपना बच्चा जो जूझ रहा है मुझे उसे भी देखना था, लाइक दिस कि मुझे दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना था। एंड आई डिड नाइसली बोथ जॉब्स, लेकिन उस दौरान एक भाव आया, उसे सुनिएगा कि रो मत। एक माँ का भाव देखिएगा कि वो किस तरह खुद को भी स्ट्रांग कर रही है और अपने बच्चे को भी स्ट्रांग कर रही है, कि रो मत, रोने से अगर कम हो जाता दर्द तो रो लेती मैं भी
0: जी।
1: रो मत, रोने से अगर कम हो जाता दर्द तो रो लेती मैं भी, हौसले से ही जीते जाते हैं हो जंग या फिर दर्द कोई, हौसले से ही जीते जाते हैं हो या जंग कोई या दर्द कोई, रो मत वरना फिर मैं भी कमजोर पड़ जाऊंगी, रो मत वरना फिर मैं भी कमजोर पड़ जाऊंगी, क्या संभालूंगी तुझको जब खुद ही ना संभल पाऊंगी, क्या संभालूंगी तुझको जो खुद ही ना संभल पाऊंगी, सहन कर इस दर्द को, सहन कर इस दर्द को, तुझको जो यूं डरा रहा मत टेक घुटने आगे इसके, यूं ही तू है बहादुर बहुत, मिलकर हराएंगे इस दर्द को, तू है बहादुर बहुत, मिलकर हराएंगे इस दर्द को, आथाम हाथ मेरा।
0: क्या बात,
1: आथाम हाथ मेरा, मैं तो छीन लाऊंगी तुझे यम के पास से भी, मैं तो छीन लाऊंगी तुझे यम के पास से भी, बस अब रो मत, रोने से गर कम हो जाता तर तो रो लेती मैं।
0: क्या बात है इंदु जी, हम नमन करते हैं आपको, एक माँ को, क्योंकि माँ ही हमारी सृष्टि की जननी है, और जब वो इतनी स्ट्रांग है तो उसके आसपास का जो माहौल है वो कितना स्ट्रांग होगा, सक्षम होगा, इसका हम अंदाजा कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कविता के लिए। और अब एक और गीत की गुंजाइश है हमारे पास। हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता आपका एक और मनपसंद गीत सुने। उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका मन पसंदीदा सिंगर यानी कि गायक कौन है।
1: मेरे मन पसंदीदा सिंगर हैं सतिंदर सरताज जी, पंजाबी सिंगर हैं
0: जी।
1: और उनकी हाल ही में पीछे शायर मूवी आई थी
0: जी,
1: तो उसे मैंने देखा और उसका एक गाना है, कोई तेरे नाल मोए पुराना तू मने आना मन ही। और वो जिस भाव से वो लिखते हैं ना, बहुत नेचुरल लिखते हैं और इतना मतलब ठहर के लिखते हैं कि मतलब सीधा रूह को स्ट्राइक करता है। उनको मैं इतना सुनती हूँ, उनको पढ़ती हूँ और मैं उनसे मिलना भी चाहती हूँ।
0: मैं चाहूंगा कि आप इस गीत को एक बार फिर गुनगुनाए
1: जी,
0: ये सोच के कि जैसे सतिंदर जी गा रहे हैं।
1: वाओ।

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम काव्य गोष्ठी और हमारे साथ हैं शिक्षा विद्वान और कवित्री श्रीमती इंदु शर्मा जी। इंदु जी, आप कविता के साथ साथ क्या लिखना पसंद करती हैं?
1: सर, कविता के साथ साथ मैं शॉर्ट स्टोरीज जैसे लघु कथाएं, दोहे
0: जी,
1: ये सब भी मैं लिखना पसंद करती हूँ।
0: तो हमारे श्रोताओं को आप कुछ आपके लिखे हुए जो दोहे
1: जी,
0: वो सुनाए, क्योंकि दोहा हमारे समाज में, हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में एक बहुत बड़ा रोल करता है, जो कुछ शब्दों में बहुत कुछ बता देता है।
1: जी जी, तो ये दोहा मेरा है, पहले तो मन के भाव पे है कि तृष्णा मिटे न मन की, मिट मिट गयो शरीर। तृष्णा मिटे न मन की, मिट मिट गयो शरीर, ऐसो वैरी मन बाबरो, ऐसो वैरी मन बाबरो, हर पल रहे अधीर।
0: क्या बात,
1: तो ये तो
0: इसका आप कुछ अर्थ भी बता सकते हैं?
1: अर्थ ये है कि देखिए, जो हम लोग हैं, तृष्णा मीन्स चीजों के पीछे कामनाएं, इच्छाएं, हमारा लालच कभी भी खत्म नहीं होता। शरीर मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं इंसान, लेकिन तृष्णा जो भूख है वो कभी भी नहीं मिटती है
0: जी।
1: और मन जो है हमारा, सबसे मन जो है इतना चंचल है, इतना बावरा है, पागल बना के रखता है, मतलब वो हर समय अधीर रहता है। अगर एक इच्छा पूरी होगी तो अब मुझे ये पाना है, मुझे ये पाना है, तो इस पर है ये दोहा। इसके बाद है प्रेम पर है
0: जी।
1: सच्चे प्रेम का मतलब एक रूप दिखाता हुआ, एक आईने की तरह बोल लीजिए कि देह की देहरी सब टपे, मन की टपे न कोई। देह की देहरी सब टपे, मन की टपे न कोई, जो मन की देहरी टपे सो सच्चा प्रेमी होए। इस दोहे में मैंने ये भाव दिए है कि सच्चा प्रेम क्या है
0: जी?
1: ये आपके जो बाहरी व्यक्तित्व है ये उसको नहीं दर्शाता। सच्चा प्रेम वो है जो किसी की आत्मा, किसी के मन के अंदर आप समा जाओ, या कोई आपकी आत्मा आपके मन में कोई समा जाए, वो सच्चा प्रेम है अकॉर्डिंग टू मी। और एक और है कि रंग खरा एक प्रेम का, दूजा रंग ना कोई। रंग खरा एक प्रेम का, दूजा रंग न कोए। यूं तो रतन अनेक हैं, यूं तो रतन अनेक हैं, पर मोती सा न कोए।
0: क्या बात,
1: इकट्ठा इनका एक मैंने भाव दिया है कि हर रंग में प्रेम का रंग जो है वो सबसे अनुपम है, उससे बढ़कर कोई भी रंग नहीं है जीवन में। और ऐसे तो अनेक मोती हैं आजकल, अनेक रत्न हैं इस पूरे संसार में, लेकिन मोती जैसा रत्न कोई नहीं है।
0: क्या बात है, कवि या कवित्रियां
1: जी
0: प्रेम के ऊपर ही लिखती हैं
1: जी,
0: या समाज में जो आसपास हमें दिख रहा है उस पे लिखती हैं, या बच्चों पर? तो आपका जो मेन सब्जेक्ट रहता है, क्या वो एक ही है या कुछ भी जो आपके सोच या आपके ऑब्जर्वेशन में आता है?
1: देखिए, मैं शिक्षिका हूँ और नारी हूँ, तो आप ये समझ सकते हैं कि जीवन के हर रंग, सुख दुख, हर पहलू, हर छोटी छोटी चीजों को मैं बारीकी से लेती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, और हर जीवन के हर रंग पर मैं अपनी कलम को आजमाती हूँ, और मैं हर लम्हे पर हर चीज को देखकर बारीकी से उस पर लिखती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही रंग है, ढेरों रंग है जीवन के, और मैंने अपने जीवन के हर छोटे छोटे लम्हों को कविताओं में पिरोया है।
0: बहुत अच्छी बात है, यानी कि आने वाले दिनों में जब आपके पास समय होता होगा, आप अपना कविता संग्रह पढ़ेंगे तो आप उन पुरानी यादों को एक बार फिर याद करते होंगे। आपसे जानना चाहूंगा कि जब आपका कविता संग्रह प्रकाशित हुआ
1: जी,
0: तो उस समय कैसा आपको लगा, और उसके लिए आपने कितनी सारी मेहनत करी, और कवि है या कवित्रियां हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जब एक कविता लिखना शुरू हो जाता है तो वहीं से ही एक कविता संग्रह की शुरुआत होती है, तो आप प्लीज बताइए।
1: सर, बात ऐसे है कि जब मैं कविताएं लिखती थी, मुझे विचार आते थे तो मैं उनको संजोती थी, लिखती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं हमेशा से ना एक छोटा सा डर था अंदर कि शायद तब तक मैंने खुद को नहीं पहचाना था कि मैं क्या हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ सोसाइटी के लिए
0: जी।
1: तो मुझे एक डर रहता था कि खुद को, मैं कहती थी कि मेरे पास जैसे डायरीज हैं तो मैं उनमें लिखती थी जो भी ख्याल आते, तो मैं खुद को कहती थी कि इंदु तू ये लिख तो रही है पर पता नहीं ये कहीं यूजलेस ना हो, ऐसे ही पड़े रहेंगे, किसे पता चलेगा कि तुमने इतना अच्छा लिखा है, क्योंकि देखिए माँ को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, वैसे एक लेखक को उसका हर लफ्ज बहुत अजीज होता है। तो मुझे भी ये लगता था कि मैं लिख तो रही हूँ, हर रोज लिख रही हूँ, लेकिन जब भी मुझे ख्याल आ रहा मैं लिख रही हूँ, लेकिन क्या क्या कभी मतलब वो सवाल भी पूछते डर लगता था मन को। लेकिन हुआ यूं कि कोरोना काल के दौरान मेरे खुद को काफी समय मिला, तो उस दौरान कुछ और कविताएं बहुत अच्छे से आई, और जो मैंने ऑलरेडी लिखी थी उनको मैंने फिर से पढ़ा, मैंने उनको फिर से एडिट किया, बार बार उनको पढ़ा, अपने पतिदेव को सुनाया। मेरे पार्टनर बहुत अच्छे हैं तो वो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, तो उन्हें सुनाया और बार बार उनको एडिट किया, जहां मुझे लगा कि नहीं ये हल्का शब्द है, थोड़ा सा इसका रिदम ताल थोड़ा और अच्छा हो सकता है, यहाँ ये लफ्ज होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए, तो वो एडिट किया। कहीं से मुझे किसी फ्रेंड से मुझे एक प्रकाशक का नंबर मिला, तो नूर साहब जी, उन्होंने मतलब प्रोत्साहित भी किया कि बहुत अच्छी बात है, इतनी छोटी एज में आप उस तरफ जा रहे हो और आपके पास इतनी सारी बल्क में यू हैव मतलब मोर देन 200 कविताएं आप लेकर आए। कुछ बारीकियां भी उन्होंने समझाई और उन्होंने इसमें हेल्प की कि मेरी एक पुस्तक का रूप देने में, काव्य संग्रह के रूप में मेरी पुस्तक को लाने में उन्होंने मदद की, अशोक नूर साहब जी, जो जगाधरी के हैं, वो भी एक प्रख्यात प्रोफेसर हैं और शायर हैं, नज़्म और गजल लिखते हैं।
0: आपने अपनी बातों में अभी अपने पतिदेव जी की बात की
1: जी,
0: आमतौर पर हमने देखा है कि कोई शायर है
1: जी,
0: जब वो कोई शायरी लिखता है या लिखती है
1: जी जी,
0: तो वो हमें पकड़ के कहते हैं कि आप मेरे ये शेर सुनो, और जबकि हम भागने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में जो आपके हस्बैंड है
1: जी,
0: जब आप उनको अपनी कविता सुनाते हैं
1: जी जी,
0: तो क्या रिएक्शन रहता है उनका?
1: उनका रिएक्शन बहुत अच्छा रहता है, टचवुड, वो एक गुरु की तरह है, वो मतलब मैं उनकी छाया हूँ, मैं कुछ भी नहीं उनके बिना। उन्होंने आफ्टर मैरिज, मैं मैरिज से पहले मेरी सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट थी
0: जी,
1: और आफ्टर मैरिज उन्होंने मुझे मेरी हायर एजुकेशन कंप्लीट करवाई, और अभी भी मुझे सपोर्ट करते हैं, अभी भी लाइफ में मैं बहुत कुछ करने वाली हूँ और वो हमेशा मेरे साथ हैं, वो दो कदम आगे और दो कदम पीछे, मेरी साइड्स हर तरफ वो मेरे साथ रहते हैं। और जब भी मैं कोई कविता लिखती हूँ तो सबसे पहले मुझे होता है कि मैं उन्हें कहीं भी वो मेरे पास हो ना हो कि उन्हें सुनानी है, तो उसमें एडिटिंग करना, उसको सुनना, उसमें सुधार करना, वो मेरे गुरु हैं, वो हर समय मेरे साथ, इतना मैं खुद को नहीं सपोर्ट करती जितना वो मुझे सपोर्ट करते हैं।
0: क्या हम माने कि वो आपकी कविताओं के क्रिटिक भी है?
1: यस ऑफ कोर्स, वो मुझे बोल देते हैं कि ये क्या लिखा है तुमने, यहाँ तो ऐसे होना चाहिए था।
0: तो मेरा तो मन कर रहा है कि सुशील जी
1: जी
0: हमारे साथ हैं, तो मैं चाहूंगा उनकी भी राय लूं। सुशील जी आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। जब इंदु जी आपको अपनी कविताएं सुनाती हैं तो आपके भाव क्या होते हैं, आप दिल से सुनते हैं या उसमें दिलचस्पी लेते हैं, और हमारी श्रोताओं को और अपकमिंग जो पोइट या पोइटस हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
2: नमस्कार भरत जी, जैसे कि आपने कहा कि इंदु जी आपको कविताएं वगैरह सुनाते हैं, पहले तो कुछ अजीब सा लगता था
0: जी,
2: लेकिन अब सुनते सुनते ऐसा लगता है कि वो जीवन का हिस्सा बन गया है
0: जी,
2: और सुनने में अच्छी लगती है। जब से ये बुक आई है तो लगता है कि हाँ ये कुछ कर पा रही है
0: जी,
2: कुछ कर रही है
0: जी।
2: बाकी रही सुधार की बात, तो ये होता है कि सुनते सुनते थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमें ये लिखना चाहिए, ये थोड़ा सा बताना चाहिए, और बाकी मैं नई उभरती हुई जो लेखिकाएं हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आप भी लिखिए, अच्छा लिखिए, और उनके परिवार वाले उनका सपोर्ट करें कि वो भी एक अच्छी लेखिका बन पाए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी राय दी और ये हमारे श्रोताओं के लिए भी एक सीखने समझने की बात है। और आखिर में मैं पूछना चाहूंगा इंदु जी के साथ साथ, क्या हम ये उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में सुशील जी भी एक शायर बनेंगे और उनका भी एक कविता संग्रह आ जाए?
2: नहीं नहीं, इंदु जी ही बहुत है जी, एक ही शायर, एक म्यान में एक ही तलवार रहती है जी, तो उसी को रहने दीजिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका,
2: धन्यवाद जी भरत जी, आपने हमें बुलाया और इतने सुनहरे पलों को जीने का एहसास करवाया, और ये हमें आज बहुत अच्छा लगा आपके स्टूडियो में आके। पहले हम ये मोबाइल पे टीवी पे देखते थे कि क्या स्टूडियो होता है, आपने सारा हमें दिखाया कैसे क्या होता है, कैसे ये रेडियो का ये होता है, हम तो सिर्फ सुनते थे, आज हमें देखने का बोलने का ये मौका मिला, ये बहुत अच्छा और बहुत यादगार पल है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। कार्यक्रम का इंदु जी समय जो है वो समाप्त होने को है। मैं आखिर में आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अपने गुरुजन के लिए क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं अपने गुरुजनों को तहे दिल से उनका शुक्रिया आभार प्रकट करना चाहूंगी। तो गुरु तो देखो हर समय आपके आस पास चारों ओर गुरु है, तो मैं समझती हूँ कि गुरुओं की ब्लेसिंग्स बहुत जरूरी हैं और मैं भी ब्लेस्ड हूँ कि मेरे जीवन में बहुत से गुरु हैं जिनकी ब्लेसिंग्स हैं और उन्हीं की ब्लेसिंग्स की वजह से आज जीवन में मैं आगे कुछ कर पा रही हूँ और बहुत कुछ अभी करना बाकी है। तो उम्मीद करती हूँ,
0: हम उम्मीद करते हैं और हम बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं, आपको इस सफर में कामयाबी मिले और आपके बहुत सारे कविता संग्रह आए और जब भी आपका कविता संग्रह आए आप हमारे पास भेजें, हम भी उन कविताओं को अपने कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। आखिर में क्या आप हमें कोई अंत में कोई कविता सुनाना चाहेंगे?
1: जी जरूर, एक प्रेम रस पर है
0: जी।
1: एक अल्हड़ अपने प्रियतम के लिए कुछ भाव लिए हुए कि ढलते ही सूरज के आगोश में तेरे घर कर जाऊं, कि ढलते ही सूरज के आगोश में तेरे घर कर जाऊं, आ तुझ में मैं तुझ में तुम होकर रह जाऊं, कि आ तुझ में तुम होकर रह जाऊं, कुछ और नहीं ख्वाहिश बस इतनी सी मेरी, कांधे पे तेरे रख सर अपना, अब मैं भी चैन की नींद सो जाऊं, जब सब गुजरे और हो सह, फिर बन सूरज की पहली किरण, बिखरूं आंगन में तेरे उजाले से तेरा जीवन भर दूं, संग रहूं तेरे बन साया, खुशियों से तेरा मैं घर भर दूं, और फिर ढलते ही सूरज के आगोश में तेरी घर कर जाऊं, आ तुझ में तुम होकर रह जाऊं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। और इसी कविता के साथ हम इस कार्यक्रम का करते हैं समापन। इंदु जी आपका और सुशील जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आमंत्रण पर यहाँ आने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, अपनी कविता पाठ करने के लिए। हम आपके आभारी हैं और हम ये चाहते हैं कि आपके दिन अच्छे हों।
1: रेडियो वितस्ता के सभी श्रोताओं का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और भरत जी का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया और मुझे अपनी कविताएं आपके साथ साझा करने का ये सुनहरे पल दिए। तो मैं इनको भी ढेरों शुभकामनाएं दूंगी कि दिन प्रतिदिन इनकी भी जो उन्नति है वो परमेश्वर चाहें और करें और हम भी समय समय पर आप लोगों के साथ अपने विचार साझा करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।
0: और रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्य गोष्ठी एपिसोड 7। आज के आमंत्रित मेहमान थे कवित्री श्रीमती इंदु शर्मा। रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट निर्देशन एवं प्रस्तुत किया भारत सोपुरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: थम सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
1: नाइन्टी पॉइंट जीरो मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, सुनते रहिए दिल से।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: तुझ बोजान FM 90.0 रेडियो विस्ता, हम सफर जिंदगी हूं। بوزان روزیو پنن پسندید بود.

0: सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: यो सा FM 90.0 मेगाहर्ट्ज के प्रसारण रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। अपने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।
2: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो सुन दे रहो अपने पसंद के गाने।

चार पैसे क्या मिले, क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब होगा तेरा अंजाम क्या।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं सिंगर नीलम नारायण। मेरा एक बहुत प्यारा वीडियो सॉन्ग मीठे मीठे इश्क की रिलीज हो चुका है, जो आप रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पे सुनने जा रहे हैं। अपना स्नेह जरूर दें। धन्यवाद।

खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: ताज महल। एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता। हम सफर जिंदगी का
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।
1: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो।
2: सब पर कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
3: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयाल बाग के राजा पधार रहे हैं।
2: 14वां श्री गणेश महोत्सव दयाल बाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अंबाला छावनी में। तो बप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महा आरती का हिस्सा जरूर बनिए।
3: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं साय 7 बजे।
2: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
3: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 साय 8 बजे।
2: गणपति बप्पा मोरिया।

0: कार्यक्रम घर परिवार सुनने वाली सभी प्यारी बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और रमेश जी आपको मेरी प्यार भरी नमस्ते।
1: जी बहुत बहुत नमस्ते और आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया,
1: क्योंकि आज पहले मैं पहुंचा हूं स्टूडियोज में।
0: जी बिल्कुल सही कहा, आज मैं थोड़ी लेट हो गई।
1: आप गए थे पानी पीने।
0: जी
1: है ना जी।
0: जी
1: इसलिए मैंने सोचा मैं ही पहुंच जाऊं और मैं आपका स्वागत करूं।
0: जी मेरा स्वागत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: अच्छा लगा ना जी।
0: जी बहुत अच्छा लगा।
1: जी जी जी तो बताइए आज किस टॉपिक पे बात होगी।
0: जी आज हम बच्चों में किस तरह से आत्मविश्वास पैदा करें इसी बारे में आज हम बात करेंगे।
1: अंग्रेजी का एक शब्द है सेल्फ कॉन्फिडेंस।
0: जी बिल्कुल,
1: बहुत जरूरी है। बच्चे काफी ज्यादा शाइनेस फील करते हैं, लेकिन आजकल वैसे बच्चे बड़े तेज हैं।
0: जी बिल्कुल सही कहा।
1: और क्योंकि नेट की वजह से काफी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, बच्चों में पढ़ने की जो आदत है वो भी बहुत अच्छी होती है। फिर भी बहुत जरूरी बनता है कि आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें तो बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ, और अब मुझे लगता है कि यहाँ प्रोग्राम में एक गीत की जरूरत है।
1: बिल्कुल जी, प्रोग्राम के शुरू में जैसे आप जानते हैं हम तो गाने की बात जब करते हैं तो शुरुआत तो गीत से ही होती है।
0: जी।

0: जैसा अभी हम इस गाने से पहले बात कर रहे थे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है, बच्चों में होनी चाहिए, और इस पर आप चर्चा करेंगे।
1: जी बिल्कुल। देखिए, किसी भी देश का भविष्य बच्चों पर निर्भर करता है, इसलिए जरूरी है कि बच्चों में आत्मविश्वास पैदा किया जाए ताकि वह जीवन में सफलताओं की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। इसके लिए जरूरी है कुछ बातों पर गौर करने की।
0: बिल्कुल, अपने मन में डर को बाहर निकालना है।
1: जी,
0: खौफ को बाहर निकालना है, ये करना है, इस तरह का जज्बा बच्चों में होना चाहिए।
1: जी, देखिए, सबसे जरूरी है कि बच्चों की बातों को अनदेखा ना करें, उनको ध्यान से सुने और उनकी बातों में रुचि भी दिखाएं, और बच्चों के साथ संतुलित व्यवहार करें। कई बार कभी किसी काम के लिए काम को करने के लिए माँ बच्चे को रोकती है, पर दूसरी तरफ पिता उसी काम को करने में बच्चे का साथ देता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ऐसी सिचुएशन में कि क्या सही है और क्या गलत।
0: बिल्कुल सोनू जी, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई माता बच्चे से कोई काम करवाना चाहती हैं और कहती हैं ये काम करिए, पिता का भी साथ मिलना चाहिए उसे, तभी जाके उसके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसमें बढ़ोतरी होगी।
1: जी बिल्कुल। देखिए, जब दोनों तरफ से हाँ होगी तो उसे पता चलेगा कि ये काम सही है और ये मुझे करना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और जहाँ तक हो सके बच्चे को झूठ बोलकर बहलाने की कोशिश ना करें, उसे आप अपनी परेशानियों मजबूरियों से अवगत कराएं। इससे बच्चे में जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा, और ये भी उसमें विश्वास होगा कि आपने उन्हें अपनी प्रॉब्लम से अवगत करवाया है, उसने अपनी प्रॉब्लम्स में शामिल किया
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल। देखिए, एक तो हम कहते हैं कि बच्चे का पहला गुरु कौन होता है, उनके माता पिता। उसके बाद स्कूल में जो हमारे टीचर्स होते हैं वो उनके गुरु बन जाते हैं, लेकिन माँ बाप का सबसे बड़ा अहम रोल होता है बच्चे की बेहबूदी के लिए। आमतौर पर ये देखा गया है कि अगर कोई घर में आता है, दरवाज़ा खटखटाता है, तो बेटा बाहर आता है और पिताजी उसको कहते हैं कि बोलना वो यहाँ नहीं है, तो यानी झूठ जो है घर से ही उसकी शुरुआत हो जाती है। इस तरह की बहुत सारी आदतें हैं जो हम खुद या माता पिता बच्चों में डालते हैं, इनसे बचना चाहिए
1: ताकि बाद में हमें परेशानी ना हो और हम ये ना कह सके कि हमारे बच्चे हमसे झूठ बोलते हैं।
0: पहले जमाने में क्या होता था, अब तो वैसे काफी हद तक सिगरेट लोग पीना छोड़ गए हैं, और लेकिन पहले जमाने में सिगरेट की डिब्बी जो लानी है, बच्चे को पैसे पकड़वाते थे और बाजार से सिगरेट की डिब्बी आप लाइए, ये आदत भी गलत है। और मैंने देखा है कि इस तरह की जब आदतें जब शुरुआत हो जाती थी तो फिर बच्चे में भी इसी तरह की आदत पड़ जाती थी।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, बच्चों को ज्यादा टोका टाकी भी ना करें, उसके पास आप इतना साथ हो जाएं कि वह अपनी बातें भी झिझक आपसे शेयर कर सके।
0: बिल्कुल, आजकल तो एक ट्रेंड भी है कि बच्चों के साथ आप दोस्त बन के रहिए, है ना जी, अपने बेटे के साथ, अपनी बेटी के साथ दोस्त बन के रहिए और उसके बाद हर बात उसे आप साझा करिए।
1: और बच्चा अगर आपका कोई गलती करता है तो आप उसे डांटें या मारे नहीं, बल्कि उसे विश्वास में लेकर प्यार से समझाने की कोशिश करें।
0: अरे, तो हमने तो काफी डांट खाई है, हमने मार भी खाई है, लेकिन आजकल माता पिता में उस तरह की हिम्मत नहीं होती है कि बच्चे को मारे। आजकल बच्चे जो है बॉडी बिल्डर्स होते हैं।
1: जी देखिए, वो तभी बॉडी बिल्डर्स बनते हैं जब हम छोटे, जब वो होते हैं, अच्छे संस्कार उनको नहीं देते हैं।
0: बिल्कुल, ये आपने सही बताया है कि बच्चे को कभी डांटिए नहीं और किसी के सामने ना डांटिए, ये सबसे बड़ी बात होती है। और उसके बाद बच्चा कोई भी जब किसी के सामने आप उसको डांटते हैं तो कोई भी स्टेप उठाने पे वो मजबूर हो जाता है, इसलिए बच्चे के साथ रहिए दोस्त बनकर।
1: और एक बात और कहना चाहेंगे, उन्हीं घरों के बच्चे कम आत्मविश्वासी बनते हैं जिनके पेरेंट्स में आपस में अनबन होती है, तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे हों तो आपको भी अच्छा व्यवहार करना होगा एक दूसरे के साथ।
0: माता पिता को चाहिए कि बच्चे के सामने झगड़ा ना करें।
1: जी बिल्कुल,
0: और ये बहुत जरूरी है। काफी बातें हुई हैं, मुझे लगता है कि यहाँ हमें रुकना पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल, रुकना पड़ेगा क्योंकि जरूरत है।
0: जरूरत है एक गाने।

0: जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना जी, बच्चे की सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी, जैसे शब्द का हमने इस्तेमाल किया कि बच्चे के साथ दोस्त बनकर रहिए, तभी जाके आपका बच्चा तरक्की कर सकता है और ऊंचाइयों को छू सकता है।
1: जी बिल्कुल सही,
0: ये बहुत जरूरी है।
1: और अब हम आगे चलेंगे और लहसुन की बात करेंगे। देखिए, लहसुन को कच्चा खाने से शरीर में के कई लाइलाज जो रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं। हर रोज लहसुन की 2 या 3 कच्ची तुरियां खाली पेट खाने से खून में बड़ी चर्बी है जो वो पतली हो जाती है।
0: आमतौर पे जो जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनके लिए कहा गया है कि अगर इस तरह का आप इस्तेमाल करें तो आपके वो जो खून है उसमें पतलापन आएगा और आपकी नाड़ियों में वो खून ठीक ढंग से चलता रहेगा।
1: जी बिल्कुल सही कहा। देखिए, इससे खून भी साफ होता है, दमा, खून में अगर आपके शुगर है, मानसिक तनाव है, सिर दर्द है, जोड़ों का दर्द, कमजोरी, बदहजमी जैसे कई रोग ठीक हो जाते हैं अगर हम डेली रूटीन में कच्ची तुरी खाते हैं 2 या 3।
0: जी, हालांकि मैंने सुना था कि सुनो जी कि इसको भून के अगर खाया जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है। बहरहाल
1: जी बिल्कुल, ये बात आपने सही खाई, लेकिन देखिए, भून कर दाल या सब्जी में डालने
0: ये बात
1: से
0: मैंने
1: इसके
0: सही खाई नहीं बल्कि सही कही। जी
1: देखिए, लहसुन को तड़के में आप भूनकर दाल और सब्जी में डालने से देखिए इसकी खुशबू और तीखापन तो खत्म हो जाता है। और आपने सही कहा कि जो दाल सब्जी है वो तो स्वाद बन जाती है, पर इसके जो औषधि गुण है वो खत्म हो जाते हैं।
0: और ये एक प्राचीन, इसको हम मेडिसिन में भी इस्तेमाल करते हैं। आजकल जो दवाइयां बनती हैं ना जी, उसमें लहसुन को इस्तेमाल में लाया जाता है। और कहते हैं कि मैंने सुना है कि आपकी जो पाचन शक्ति है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है अगर आप लहसुन ले लें। इसलिए हर सब्जी में, यहाँ पे इस एरिया में, हर जगह लगभग लहसुन लेते हैं।
1: देखिए, बिना गर्म किए लहसुन का जैम बनाकर सेवन किया जा सकता है, जिससे कि लहसुन के जो औषधि गुण है वो बरकरार रहेंगे।
0: बिल्कुल, लहसुन का पेस्ट बना सकते हैं और उसके बाद उसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है।
1: देखिए, आप जैम बना सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं हम बताएं?
0: जी बिल्कुल।
1: देखिए, 250 ग्राम आप लहसुन की तुरियों को अच्छी तरह बारीक पीसकर शीशे की खुली मुंह वाली शीशी में डालकर उसमें 250 ग्राम आप शहद डालें और आपका जो जैम है वो तैयार हो जाएगा। और लहसुन के जैम में आप 50 ग्राम अदरक भी बारीक करके डाल सकते हैं, टेस्ट दुगना हो जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने और ये आपको फायदा दे सकता है, बल्कि बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताई हमें कि लहसुन के जो फायदे हैं बहुत जरूरी है, लेना चाहिए लेना चाहिए। हम आपको एक गाना सुनाते हैं।

0: तुम ये बहार देखो रंग लाया प्यार भर कार के महीने में
1: बहुत जरूरी है कि आमतौर पर सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है लहसुन और ये इसकी तासीर गर्म रहती है तो इसलिए शरीर में गर्माहट भी रहती है और बहुत फायदे हैं जी और लेना चाहिए। बहरहाल आज आप हमें क्या खिलाएंगे?
2: जी आज हम खिलाएंगे गाजर का हलवा।
1: गाजर का हलवा आमतौर पर सर्दियों में ही खाया जाता है क्योंकि सर्दियों में गाजर ज्यादा उपलब्ध रहती हैं और सस्ती रहती हैं
2: और ये बहुत पौष्टिक भी होते हैं।
1: हाँ जी
2: देखिए गाजर का हलवा बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो कुछ इस तरह से है। गाजर आप 1 किलो लीजिए, चीनी 250 ग्राम, खोया 250 ग्राम, दूध आप 1 कप लीजिए, देसी घी 1 टेबलस्पून, किशमिश 1 टेबलस्पून, काजू 10-15 ग्राम कटे हुए लीजिए, नारियल 1 टेबलस्पून कद्दूकस किया हुआ या आप कटा हुआ भी ले सकते हैं, छोटी इलायची 5-6 पीसी हुई लीजिए। ये थी सामग्री। अब विधि कुछ इस तरह से है। सबसे पहले गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजरों को धोकर छील लें तथा इसे इन्हें कद्दूकस कर लें। खोया कढ़ाई में डालकर धीमी आंच पर भून लें। भुना हुआ खोया एक प्याले में डालकर रख लें। कद्दूकस की हुई गाजर कढ़ाई में डालकर गैस पर रखें और इसमें दूध डालकर मिला लें। गाजर को नर्म होने तक पकने दें और इसमें चीनी मिलाकर थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे हिलाते रहें। गाजर अपना रस छोड़ने लगे हर 2 मिनट के बाद उसे आप हिलाते रहें ताकि वह नीचे ना लग जाए। रस सूखने तक उसे आप अच्छी तरह पका लें। पकी गाजर में घी डालकर उसे भून लें। अब किशमिश, काजू और खोया मिला लें और 2-3 मिनट के बाद गैस बंद कर हलवे में पिसी इलायची मिला दें। हलवे को प्याले में निकाल लें तथा इसे कद्दूकस से किए हुए नारियल से सजाकर गरम गरम या ठंडा परोस सकते हैं।
1: अगली बार जब आप घर जाएंगे, घर से आएंगे तो ये जरूर बनाइएगा और हम खाना चाहेंगे।
2: जी बिल्कुल जरूर खिलाएंगे।
1: एक साथ हम खाएंगे बिल्कुल। ये तो आजकल बड़ा आप बता रहे थे ये सारी बातें और हमारे मुंह में पानी आने लगा था।
2: जी जी आपका स्वाद अगली बार चेंज हो जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए गाजर का हलवा मैंने बहुत पहले आपसे कहा था कि हमारे किसी लिसनर ने हमें बताया था खत के लिए शुक्रिया प्रोग्राम में कि गाजर का हलवा कैसे बनाते हैं इस पर आप चर्चा जरूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: लेकिन जाते जाते खूबसूरत सा गाना।
1: बिल्कुल जी, गाना मैंने तैयार रखा है जी। गाना हम आपको सुनाते हैं और मुझे आप इजाजत दीजिए।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 9.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अंबा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अंबा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर के सी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुले आम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ, अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हो तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अंबाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अंबाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है, और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अंबाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार

0: श्रोताओ, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक, 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक। ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

कोई तुझे पुकारे तो मैं लब खोलूं, क्या जीना और क्या मर जाना, ऐसा होता है याराना। अरे छोड़ी यारों ने दुनिया पर।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आपदा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

सुनिए बप्पी लाहिरी के दिल छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज से रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
1: सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के सुरों की सौगात, जो हर बार छू जाते हैं दिल के जज्बात। इनके आवाजों में है एक अलग ही असर, जो बना देती है हर पल को हसीन और बेहतर। तो आइए सुनते हैं नितिन मुकेश और लता मंगेशकर जी के दिल छूने वाले नगमे हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 एफएम पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

0: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए

0: 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाए।
1: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तू लिखता रहे।
1: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
0: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हो तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार।

0: श्रोताओ, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की ये रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की ये रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूँ विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय।

0: आपने ट्यून इन किया है सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज हम आपके साथ एक संवेदनशील विषय पर बात करना चाहेंगे जो हम सबके लिए ही बहुत ही जरूरी है। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा के सभी सामुदायिक रेडियो के माध्यम से, गाँव वासियों के लिए, सरपंचों के लिए, सभी हरियाणा वासियों के लिए। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और अपने आसपास के वातावरण को बचा के रखिए।
1: एक छोटी सी जिम्मेदारी सबको बचा।
0: हरियाणा में खुले पड़े बोरवेल एक गंभीर और जानलेवा समस्या बन चुकी है। आए दिन मासूम बच्चे खेलते खेलते इन गहरे गड्ढों में गिर जाते हैं, जिससे न केवल उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है बल्कि पूरे प्रशासनिक अमले की सांसें अटक जाती है। खेतों में बोरवेल को खुला छोड़ना एक प्रशासनिक लापरवाही ही नहीं है बल्कि एक गंभीर अपराध है। सुरक्षा सर्वोपरि। हरियाणा में खुले बोरवेल का खतरा और कानूनी परिणाम। खेतों में सिंचाई के लिए बोरवेल खोदना किसानों की जरूरत है, लेकिन काम पूरा होने के बाद या बोरवेल के असफल होने पर उसे खुला छोड़ देना साक्षात मौत को दावत देने जैसा है। हरियाणा के विभिन्न जिलों से ऐसे कई दर्दनाक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां मासूमों को इन अंधेरे कुओं से निकालने के लिए सेना और NDRF को घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ता है। बोरवेल को बंद रखना क्यों जरूरी है, कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूँ। पहला, मासूमों की सुरक्षा। खुले बोरवेल सबसे बड़ा खतरा बच्चों और मवेशियों यानी पशुओं के लिए होते हैं। खेल कूद के दौरान या घास चरते समय इनमें गिरने का जोखिम हमेशा बना रहता है। दूसरा, मानवीय और आर्थिक नुकसान। एक हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में लाखों रुपए और प्रशासनिक ऊर्जा खर्च होती है। सबसे बढ़कर कई बार घंटों की मशक्कत के बाद भी बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकती है, जो कि एक कभी ना भरने वाला घाव है। तीसरा, सतर्कता ही बचाव है। बोरवेल का काम खत्म होते ही उससे लोहे के मजबूत ढक्कन यानी कैप से ढकना, चारों तरफ कंक्रीट से पक्का करना और कटीली तारों की फेंसिंग करना बेहद जरूरी है। कानूनी प्रावधान और सख्त दंड। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन ने खुले बोरवेल छोड़ने वालों के खिलाफ कड़े रुख अपनाए हैं। अगर कोई अपने खेत या प्लॉट में बोरवेल खुला छोड़ता है तो उसके खिलाफ निम्नलिखित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराएं, जो पहले IPS के नाम से हम जानते थे। पहला, लापरवाही से जान जोखिम में डालना। खुले बोरवेल के कारण किसी की जान को खतरा पैदा करने पर लापरवाही का मामला दर्ज होता है। दूसरा, गैर इरादतन हत्या का मामला। यदि खुले बोरवेल में गिरने से किसी बच्चे या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जमीन के मालिक और बोरवेल खोदने वाली एजेंसी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बोरवेल खोदने से कम 15 दिन पहले जिला प्रशासन यानी DC या सरपंच को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर बोरवेल को तुरंत सील कर दिया जाता है। जमीन मालिक पर भारी प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाता है। हादसे की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव कार्य का पूरा खर्च भी दोषी जमीन मालिक से वसूला जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे कर्तव्य की। एक छोटी सी लापरवाही एक जिंदगी का अंत कर सकती है। यदि आपके आसपास या खेत में कोई ऐसा बोरवेल है जो इस्तेमाल में नहीं है तो उसे तुरंत मिट्टी, मलबे या कंक्रीट से ऊपर तक भर दें। अगर कोई मकान या जमीन मालिक कहने पर भी बोरवेल बंद नहीं करता है तो इसकी सूचना तुरंत अपने गांव के सरपंच, स्थानीय पुलिस या जिला प्रशासन को दें। सजग रहें और किसी मासूम की जान बचाने में अपना योगदान दे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो।
1: सब पर कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
2: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयाल बाग के राजा पधार रहे हैं।
1: 14वां श्री गणेश महोत्सव दयाल बाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अम्बाला छावनी में। तो बप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महा आरती का हिस्सा जरूर बनिए।
2: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं साय 7 बजे।
1: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
2: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 साय 8 बजे।
1: गणपति बप्पा मोरिया।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुन।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। आज की शाम हम सजाए हैं गजल के उस हरफन मौला गायक भूपिंदर सिंह और मिताली जी के नाम। दर्द, जज्बात, मोहब्बत और अल्फाजों के सुरूर के साथ पेश है शामे गजल।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: सब पर कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
1: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयाल बाग के राजा पधार रहे हैं।
0: 14वां श्री गणेश महोत्सव दयाल बाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अंबाला छावनी में। तो बप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महा आरती का हिस्सा जरूर बनिए।
1: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं साय 7 बजे।
0: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
1: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 साय 8 बजे।
0: गणपति बप्पा मोरिया।
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का दर्द। आज के आमंत्रित मेहमान हैं एक्टर डायरेक्टर फिल्म मेकर श्री रोमेश पंडिता जी, एक्टर डायरेक्टर फिल्म मेकर सिंगर श्री भारत पंडित जी और व्यवसायी श्री संजीव रैना जी। इनसे बात करेंगे भारत सोपोरी। प्रोग्राम रिकॉर्ड एडिट निर्देशित एवं प्रस्तुतकर्ता भारत सोपोरी।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज का जो कार्यक्रम है इसका शीर्षक है विस्थापन का दर्द। विस्थापन एक ऐसी तकलीफ है, एक ऐसा दर्द है जब एक कम्युनिटी को, एक समूह को घर छोड़ना पड़ता है तो उसकी जिंदगी में क्या क्या तकलीफें आती है और उन तकलीफों के साथ कौन कौन से मुश्किलें आती है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता अंबाला से प्रसारण करता है और संस्था वेथ थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी रजिस्टर्ड इस सामुदायिक रेडियो को चलाती है। आप ये भी सभी जानते हैं कि मैं एक कश्मीरी पंडित हूं और आज से 36 वर्ष पहले मैं इस मेरी जिंदगी की दूसरी जन्मभूमि पर आया था अपनी जिम्मेदारी निभाने, अपने कर्म करने के लिए। और हमेशा ये मन में था कि अंबाला ने मुझे बहुत कुछ दिया, मैं अंबाला को क्या दे सकता हूँ। शायद पैसे के रूप में तो मैं कुछ नहीं दे पाया, पर मेरे मन में ये जरूर था कि अंबाला को एक आवाज देंगे, आवाज देने की कोशिश करेंगे जो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता के माध्यम से हम आपके साथ जुड़े हैं 1 सितंबर 2023 से। इससे पहले भी ये वेब एंड इंटरनेट रेडियो रेडियो वितस्ता के नाम से आपके साथ पिछले 7 साल से जुड़ा है। आज हम ये कार्यक्रम पहली बार आपके सामने ला रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे कि विस्थापन का दर्द क्या होता है। इस समय मेरे पास बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में आमंत्रित है और उनका

0: तारुफ आपसे कराऊं उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। 1990 के दशक में कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ था, जिसके कारण लगभग 3 लाख लोग विस्थापित हुए थे, जिनमें से अधिकांश कश्मीरी पंडित थे। ये विस्थापन 1990 में शुरू हुए उग्रवाद और हिंसा के कारण हुआ था, जिसके कारण कश्मीरी पंडितों को अपनी जान और संपत्ति की सुरक्षा के लिए घाटी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। बहुत बार ऐसे भी कहा गया कि कश्मीरी पंडित वहां से डर के निकले, पर ऐसा नहीं है। हालात उस तरीके के हो गए जो वहां पर अकलियत में है, यानी कि कम परसेंटेज के लोग हैं जैसे कश्मीरी पंडित, और जो वहां पर अक्सरियत है, जो ज्यादा लोग वहां पर मुसलमान रहते हैं, वहां पर ऐसे हालात हो गए कि हमें सबसे पहले संपत्ति, हमारे काम, हमारी नौकरियां, वो सब छोड़ने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि ऐसा कहा जाता है जान है तो जहां है, और साथ में हमारी माता बहनों का, उनकी इज्जत बचाने के लिए हमें विस्थापन करना पड़ा। ये विस्थापन आसान नहीं था। आज हम इसी बात को आपके सामने ला रहे हैं और इस कार्यक्रम को हम कुछ कश्मीरी में भी और हिंदी में ज्यादातर करेंगे ताकि आप लोग भी इस दर्द को महसूस करें। कई बार हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे भी दर्द होते हैं जिनको हम महसूस करते हैं और दिल तक वो दर्द चला जाता है। मैं एक कश्मीरी पंडित होने के नाते इन 36 वर्षों में कभी भी इस बात पर अपना दुख जाहिर नहीं किया कि मैंने खोया क्या है। मैंने इन 36 वर्षों में जो पाया है उसी को सामने रख के मैंने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया। जो समुदाय मुझे आसपास मिले, चाहे मेरे प्रोफेशन में चाहे मेरे पैशन में, मैंने देखा कि मेरे साथ मैंने हमेशा कोशिश की कि उनकी भी उन्नति उतनी ही हो जाए जितनी मैंने अपनी करने की कोशिश की। तो आइए इस कार्यक्रम में जो आज हमारे साथ आमंत्रित मेहमान है, उनमें से सबसे पहले मैं नाम लेता हूं चंडीगढ़ में रहने वाले रोमेश पंडिता जी का, जो फिल्म मेकर है, सोशल एक्टिविस्ट है, एक्टर है, डायरेक्टर है, और हमेशा उनका जो मन है वो कश्मीर और उस जगह के साथ जुड़ा है जहां से वो बिलोंग करते हैं। सारी बात हम उनसे भी जानेंगे। और इनके साथ हमारे साथ है भारत पंडित, जो मुंबई में रहते हैं। ये फिल्म और टेलीविजन प्रोड्यूसर है, गायक है, कंपोजर है, और एक्टर और डायरेक्टर भी है। आज हमें बहुत खुशी है कि ये लोग हमारे साथ है, और इनके साथ ही हमारे साथ है संजीव रैना, जो चंडीगढ़ से है, एक व्यवसायी है, सोशल एक्टिविस्ट है, और एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हैं। रमेश जी, भारत जी और संजीव रैना जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। मैं चाहूंगा कि एक एक करके आप अपने शब्दों से अपना परिचय दें।
1: नमस्कार भारत जी, थैंक यू। पहले तो आपने इमोशनल कर दिया, फिर वही कहानी आपने दोहराई जिसको हम भूलना चाहते हैं, मगर ये ऐसे रिश्ते जख्म हैं जो अभी तक रिस रहे हैं। आपने जो कश्मीर का जिक्र किया, जो 1990 में हमें वहां से निकलना पड़ा, क्यों निकलना पड़ा सबको पता है इस टाइम, मगर मैं इसमें ज्यादा बिलीफ रखता हूं कि हमें आगे देखना चाहिए। मगर क्या करें, कभी कभी बहुत ज्यादा दर्द रिश्ता है तो, और आपने छेड़ दिया तो रिसने लगा। जैसे आपने बताया, मेरा नाम रोमेश पंडिता है। कश्मीर में एक सोपोर जगह है, वैसे सब लोग जानते होंगे क्योंकि उग्रवाद वहीं से शुरू हुआ था। मैं उस सोपोर का रहने वाला हूँ, और वहां से जब हम 1990 में वहां से निकले थे, विस्थापित हुए थे, फोर्सफुल एग्जोडस हमारा हुआ था, बिखरते बिखरते इधर उधर जाके हम, यानी कि मैं और मेरी फैमिली, हम चंडीगढ़ में सेटल हो गए। और चंडीगढ़ में हमारे लिए सबसे बड़ा एक एडवांटेज थी कश्मीरी पंडितों के लिए कि हम जो हमारे पेरेंट्स थे, हमारे बुजुर्ग थे, वो हमेशा हमें एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दे देते। तब तो समझ नहीं आता था क्यों इतना जोर दिया जाता, बट आज समझ आती है क्योंकि उसी एजुकेशन, उसी की वजह से हम आज जिस मुकाम पे भी पहुंच जाएं, सिर्फ उसी एजुकेशन के कारण, और हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उनकी जो दूरदृष्टि थी उसके कारण हम पहुंचे। और अपनी अपनी लाइफों में आज सेटल है, मगर वही कहते हैं ना कि राम जी ने तो वनवास लिया 14 साल के लिए, हमारे तो भी 36 साल हुए हैं और पता भी नहीं कि आगे कितने और साल होंगे। 36 घंटे के लिए कोई निकलता ना घर से, उसको घर की याद आती है। यहां तो 36 साल हो गए, चाहे कहीं भी बसे हैं, बट वो कश्मीर जो दिल और आत्मा में बसा है अभी भी हमें बुला रहा है, चिल्ला चिल्ला के बुला रहा है। बस अभी इतना ही कहना चाहूंगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। भारत जी।
2: धन्यवाद भरत सपूरी जी और रमेश जी, आपने जो बातें कही हैं बिल्कुल हमारे समक्ष आती हैं, वो रातें या वो रात अगर कहें वहाँ की, जब हमको कश्मीर से निकलना पड़ा, पलायन करना पड़ा, बहुत ही दर्दनाक रात थी वो। और पता नहीं पल पल में ये पूरा सा जो हमने वहाँ पे एक बगीचा एक गुलशन बनाया था वो ऐसे बिखर गया कि हमें फूलों की पंखुड़ियाँ तक कहीं नहीं मिली, और जो मिला तो बस दर्द भरी रातें, और मिला पत्थर, ईंट, बिच्छू, सांप और जहरीली धूप। हम कश्मीर में धूप देखने के लिए बड़ा तरसते थे क्योंकि कश्मीर की रातें बड़ी ठंडी होती हैं, और उसी धूप से हम इतना डरने लगे क्योंकि इतनी तीखी धूप जम्मू में, और इतनी बेचैनी और वो जो अंदर की त्रासदी थी उसने हमको बहुत झिंझोड़ के रख दिया है। अब देखिए, जैसा रमेश जी ने बोला कि हमारे पास विद्या का जो ज्ञान है वो तो है ही, हर एक कश्मीरी पंडित के पास था, तो उसी का सहारा लेते हुए और बिना कोई विलंब किए हुए उन्होंने अपने आप को संवारने की कोशिश की, सुधारने की कोशिश की, और निकल पड़े कई दिशाओं में। जो ना निकल पाए वो कश्मीर अपने जम्मू में ही रह गए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगियों को संजोया और फिर से उठने की कोशिश की, और आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर इन 35 सालों में वो एक अपना मकाम पा चुके। लेकिन ये मकाम होने के बावजूद भी एक अंदर से एक कसक रही है कि भाई वो कश्मीर, वो जगह जहाँ से हमें, मैं मेरा ताल्लुक बारामुल्ला से है, मैं बारामुल्ला से आता हूँ, पहले सोपोर और फिर बारामुल्ला, तो वो छूटता नहीं है। अभी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी भेस में हम उस कश्मीर को ढूंढते रहते हैं। कहीं आपने उठ के चिनार का बीज वहाँ से उठा के कहीं पे लगा दिया, कहीं आपने किसी सब्जी का बीज लाया वहाँ से और यहाँ पे बो लिया तो उसमें आपको कश्मीर दिखता है, कहीं आपने वहाँ से अपने मकान की कोई सी ईंट उठा के इधर लगा दी तो उसमें आपको ये मकान अपना लग, गोया कि ऐसा है कि भाई आपको हर एक चीज़ में, हर एक पल में आपको वो कश्मीर अपने अंदर दिखता है। तो जैसे कहें कि कभी भी हम उस कश्मीर के अपने घर को छोड़ना नहीं चाहते थे, हमारे बहुत ही करीबी थे वो घर, और ख़ासकर किसी भी कश्मीरी के लिए अपना घर होना बहुत ज़रूरी है और वो उसकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कश्मीरी की बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट ओनली कश्मीरी पंडित्स, बस कश्मीरी मुस्लिम्स आल्सो, ये अपना घर जो होता है, मतलब कश्मीरी किराए के मकानों में रहना पसंद कभी नहीं करते हैं, तो इसलिए अपना घर अपना ही घर होता है, और वहाँ पे जिस तरह से हम रहते थे और अपने घरों को जिस तरह बनाया था, मैं तो पर्सनली अगर आप पूछें मुझसे तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं कश्मीर को छोड़ के बाहर निकलूंगा। कई लोग जाते थे ट्रेनिंग के लिए, उसके लिए, इसके, लेकिन वापस कश्मीर में ही आना था, वापस उसी जगह पे जहां आपने बचपन से खेला है, जहां आपने बचपन देखा है, जहां आपने लड़कपन हुआ है, आपकी बहुत सारी शामें गुजरी हैं, सुबह गुजरी हैं, मंदिर की घंटियां सुनी हैं आपने, आप वही, मतलब जितनी भी रिवायतें हैं अपनी, जितनी भी रिचुअल्स हैं हमारे, जितने भी वो हमारे काम थे वहां के, तो उन्हीं चीज़ों में हम बिल्कुल मस्त थे, कोई दिक्कत उस हिसाब की नहीं थी। दिक्कत जो थी वो कहीं और पनप रही थी, जो हमको दिखी नहीं, हम बड़े अपने ही सरल भाव से बड़े आनंद में रह रहे थे वहाँ पे, लेकिन एक ये त्रासदी जो थी जो हमारे ऊपर आ गई और हमको निकलना पड़ा। लेकिन मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि अपनी सलाहियतों के बिना पर, जो हमारी सलाहियतें वहाँ पर भी थीं लेकिन उनका अच्छे तरह से उसका हो नहीं पाया था बाकी आगे, लेकिन सलाहियतों के बिना पे हमने अपनी जिंदगियों को संजोया है, संवारा है और इस मकाम तक पहुंचे हैं, तो मेरा इतना मानना है इसके बारे में। जी
0: संजीव जी के पास जाने से पहले मैं भारत जी आपसे ये कहना चाहूंगा, आपने अपने घर की बात की
2: जी,
0: हम पिछले 36 वर्षों से विस्थापन में रह रहे हैं अलग अलग जगहों पर
2: जी,
0: तो क्या हम वो अपना घर बना पाए?
2: जी नहीं, वो अपना घर नहीं बना पाए हम, बिल्कुल नहीं बना पाए हैं। वही मैं बोल रहा हूँ, हम बनाने की कोशिश में लगे हैं पिछले 36 सालों में, लेकिन नहीं बनता है, क्योंकि जो होम एंड हर्थ होती है, वो जहाँ आपका जन्म स्थान है, वो आपको कहीं ना कहीं वो मिस तो आप करेंगे ही करेंगे, वहाँ की आबहवा, वहाँ की खुशबू, वहाँ की महक, वहाँ की क्यूजीन, वहाँ का उठना बैठना, रहना सहना, आपका दरिया, आपकी वितस्ता, कैसे भूल सकते हैं आप? आपका नाम ही रेडियो वितस्ता है, तो इसी पर मेरे ख्याल में आपने ये रखा हुआ है नाम। तो उस वितस्ता को आप कहाँ पाएंगे? वो यारबल जिसे हम कश्मीरी में कहते थे, यारबल मतलब जिसे मराठी में कट्टा बोलते हैं और यहाँ पे बैठक बोलते हैं, तो वो एक घाट जहाँ पे आप बैठ के चार बातें करें अपने दोस्तों के साथ, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। वैसे यहाँ पे भी दोस्त हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, लेकिन वो एक बात जो होती है, जो इशारों से बात समझ आती थी हमको, वो इशारों से बात समझ नहीं आएगी यहाँ पे, तो मुझे ऐसा मेरा मानना है।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी।
1: जी भरत जी, धन्यवाद। आपने हमें, तीन चार दोस्त हमारे यहाँ जमा हो गए, रमेश जी ने आपको डिटेल में बताया, भरत जी ने पूरा ही उसका विवरण किया। तो इसी विवरण के साथ जब हम कश्मीर छोड़ के आए, तो मन में तो था कि हमें घर से भगाया गया, और मैंने चंडीगढ़ में सबने मकान दुकान सबने ले लिए, कश्मीरी पंडित सभी वेल सेटल्ड है। अब मैंने उसके साथ सोचा कि मैं डिफरेंट क्या करूं, तो मैंने ज़मीन ले ली और वहां कश्मीर बनाने की कोशिश की, कि मैंने एप्पल कल्टिवेशन की, एप्पल हार्वेस्ट मैंने किया, और मैंने सेब इंपोर्ट ट्रीज कराए, जिसकी मुझे मेरे फ्रेंड्स नोनी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के थे, वो उन्होंने हेल्प की, डायरेक्टर रिसर्च डायरेक्टर कश्मीर के थे, वो मेरे बैचमेट थे, वो उन्होंने सपोर्ट किया, और अच्छी तरह प्रोडक्शन मेरी की, जहाँ मैं वस्तहाक जो कश्मीरी खाते हैं, वो हाक वस्तहाक जो हमारा कर्ट हाक बोलते हैं, वो ये हमारी कुजीन कश्मीरी सब्जियाँ हैं, वो मैं वहाँ कल्टीवेट की। तो ये मैं इसलिए कर रहा था बिकॉज मैं कश्मीरी हूँ, मन में मेरा कश्मीर बसा हुआ है, इतने सब सेटल होने के बाद भी कुछ खोया हुआ है, विच आई फील कि कुछ ना कुछ दर्द कहीं छुपा हुआ, जैसे रमेश भाई ने बोला कि रिश्ता, वो रिश्ते
0: जख्म
1: जो उन्होंने फिल्म बनाई है, तो रिश्ते जख्म वाकई में वो मैं वर्चुअली के सामने कहते हैं, फिल्म में नहीं देख लेना, मैं देख नहीं पाता हूँ, क्योंकि मुझे सब याद आ जाते, मुझे आंसू आ जाने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने रियल वो फिल्म बनाई जो हमारे साथ गुजरा हुआ हुआ। इतना प्यार वहाँ था, मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा, मैं बचपन में मेरे पड़ोसी डार साहब रहते थे, तो एक दिन मैं स्कूल में था, नॉटी थे, तो मैं सिगरेट उठा के सिगरेट की बिट वो पी रहा था, डार साहब ने कहीं देख ली, डार साहब ने दो तीन मेरे थप्पड़ मार दिया, वहाँ मैं बात रही याद गई, बोल डार साहब बोल के मैं घर चला गया, सुबह 6 बजे डार साहब घर पहुंच गए, मैं मम्मी और डैडी को कहते ये सिगरेट पी रहा था। वो प्यार और वो पहले इज्जत हुआ करती थी, वो कहाँ है ऑल ऑफ सडन इतने सालों में 90 में कहाँ उभर आई कि वो सब भूल गए। जब हम घर से निकले, किसी ने ये भी नहीं बोला कि तुम रुक जाओ, तो इट वॉज ए फोर्सिबल
0: एक्सोडस।
1: यस, और ये दर्द हर एक कश्मीरी हिंदू को मन में तन में सब जगह मरेगा तभी याद रहेगी, अब आगे फ्यूचर जनरेशन उनको हमसे ज्यादा है। कश्मीर में हमारा जन्मभूमि है, मातृभूमि है, हम वहाँ जाएंगे भी इज्जत से जाना चाहते हैं, ये मेरा कहना।
0: संजीव जी, आपने कहा कि मैंने कोशिश की कि मैं चंडीगढ़ में कश्मीर को बनाऊं, आपने जो कोशिश की वो सराहनीय है, पर मुझे एक बात आपसे जाननी है, जो हवा का झोंका हमें कश्मीर में रह के उस चिनार के दरख्त से आता था, एक दिल को तसल्ली देता था, क्या वो कश्मीर चंडीगढ़ में बन पाए?
1: वो तो कभी नहीं बने।
3: ये तो यार महाराज जी वही कहानी हो गई, क्योंकि जब आप कभी कहानी लिखने बैठते हो, कहानी लिखते हो कश्मीर के बारे में, एग्जैक्टली संजीव ने कहानी एक शुरू की है, इसका एप्पल कल्टीवेशन, बाकी चीजें जो इसने नाम लिया, इट्स लाइक दैट कहानी। वो कहानी आपको वो चीज नहीं देगी जो आपको रियलिटी, जब आप बैठेंगे चिनार के, या जैसे अभी इसने यारबल बोल दिया
0: जी,
3: तो ये वो चीज नहीं होती है। अब मैं जब कश्मीर जाता हूं, बिलीव मी, जब मैं खासकर सोपोर जाता हूं, मैं जो जैसे अभी हमारे भारत पंडित जी ने बोल दिया, एक यारबल से पता नहीं क्या अट्रैक्शन थी, यारबल मींस कि जो दरिया का किनारा होता है, उसे क्या अट्रैक्शन थी कि मंदिर के किनारे बैठ के वहां पे, और वहां बैठ के जितना दरिया में पानी बह रहा होता ना, उससे ज्यादा मेरी आंखों से अपने दरिया बह रहा होता
0: जी,
3: वो चीज हम नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते। खुश है, खुशहाल है, लगता है कि जिंदगी बहुत खुशहाल है, मगर जो अंदर दर्द है, मेरा एक बड़ा फेवरेट शेर है, लोग सोचते हैं खुश हूं मुस्कुराता हूं, बट हर हंसी हंसने से पहले जार जार रोता हूं, वही हर कश्मीरी पंडित का हाल है। उनको जैसे ही कहीं पे कश्मीर का नाम आएगा, उनकी इतनी लंबी आह होगी कि वो कश्मीर की हवाओं को भी मात देगी। सो ये कश्मीर कहीं नहीं निकल सकता, सिंपल सी बात है। मगर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो संजीव ने भी बोला ना, कि जो जब से हम वहां से निकले थे, मगर मेरा जो मानना इस चीज का मानना है कि हमें आज नहीं तो कल वापस जाना चाहिए। मैं हमेशा लिखता हूं, कभी कभी कुछ तुकबंदी भी करता हूं। मैंने एक फिल्म बनाई हुई थी, उसमें मैंने एक सॉन्ग भी लिखा था, जुहा वंदियो हा घर में आने, मीन्स सदके जाऊं अपने घर पे। उसमें एक था विनती छा ढबे पेट तापे पेवान ब्रांड कन विनती छा रोद छला।
0: क्या बात,
3: मीन्स कि जो डब मीन्स वरंडा ही बोलूंगा मैं,
0: हाँ।
3: वरंडा पे आज भी, क्योंकि सुबह की धूप जो आती थी ना,
0: सुहानी
3: होती थी, और हमारी माताएं, जो हमारी माताएं बहनें थी, वो सुबह उठ के, वहां रूटीन था कश्मीरी पंडितों में कि जो ब्रामदा हमारा बाहर का होता है, सीढ़ियां जब पहले चढ़ते हैं, वहां हमेशा ग्राउंड से ऊपर थोड़ा मकान बनाए जाते, उसको वहां धोना पड़ता था,
0: पूजा पाठ
3: वो ऑलमोस्ट पूजा ही होती थी, क्योंकि आप अपने जो वो कहते हैं कि यहाँ से हमारे जो है ना गृह लक्ष्मी वगैरह आती है, तो इसको धोना। तो ये हमारे आज भी कई माताएं मैंने देखा कि जबकि फ्लैटों में रहते हैं, बाहर पानी का छिड़काव करते
0: लगाते,
3: वो कश्मीरी तो है ना साथ।
0: तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विस्थापन का दर्द। ये एक ऐसा दर्द है जो सुबह से लेके शाम तक हमें कचोटता है, हमें तकलीफ देता है, पर हमारे कर्म जो है वो हमें रुकने नहीं देते। हम हर दिन कुछ नया सोचते हैं और नया करने की कोशिश करते हैं। अभी भारत जी से ही हम पूछते हैं, सभी श्रोताओं के लिए हम भारत जी को अनुरोध करेंगे कि वो कुछ हमें कश्मीर की कुछ फिजाओं को गुनगुना के भी सुनाएं। बट सबसे पहले मैं ये तीनों से पूछना चाहता हूं कि कश्मीर से तो हम बाहर आ गए, क्या हमारे भीतर जो कश्मीर है, क्या उसको बाहर कभी निकाला जा सकता है?
2: भरत जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और जो बात कर ही रहे थे उसी का एक्सटेंशन है ये
0: जी।
2: ये जैसे पहले भी बोला गया हमने कि कतई नामुमकिन है, वो ये नहीं हो पाएगा। जो रिवायतें हैं हमारी, जो कदरें हैं हमारी, जो रिचुअल्स हैं हमारी, जो हमने लम्हे वहाँ पे बिताए हैं, तो उनको हम बिल्कुल अपने अंदर से जुदा नहीं कर सकते हैं। अब एक छोटी सी बात बताएं आपको, अभी बात कर रहे थे यारबल की या सोपोर की, दरिया की बात करें, किसी भी दरिया की जो भी तस्ता वहाँ पर बहती है, एक पर्व होता है जिसका नाम सोंथ है
0: जी।
2: तो सोंथ में हमारी एक प्रथा रहती थी कि हम जो रात को जो थाली भरते हैं और सुबह उसमें कुछ अखरोट होते हैं
0: जी।
2: तो अखरोट लेके हम चलते थे, हम दरिया के किनारे जाते थे और वहां एक चार अखरोट में वो इधर से उधर किश्ते से पार करता। अब जब मैं सुबह उठता हूँ और उन दर्शन करता हूँ और फिर वो चार, मैं सोचता हूँ चार अखरोट उनका अब क्या करूँ मैं,
0: क्योंकि यहाँ पर वो सुविधा
2: मेरी व्यस्तता है, यहाँ पे ना मेरा वो तारने वाला है जो जिसको मैं चार अखरोट में एक तार लगा देता था। तो ऐसी चीजें फिर क्या करें, फिर उसका एक नवेद बना के आप खा लेते हैं, लेकिन ऐसी चीजें जब याद आती हैं तो आप कैसे निकाल पाओगे अपने अंदर से। बात यही है ना कि कोई ईंट लेके आता है वहां से, कोई अब इन्होंने संजीव जी ने एप्पल बनाए, इनको एप्पल का कारोबार थोड़ी करना है
0: नहीं।
2: लेकिन ये है कि भाई चलो मुझ में थोड़ा सा कश्मीर कहीं पे, या हम कमरों में दरिया बिछाते हैं जो कश्मीर की दरिया हो
0: जी,
2: जैसे मैंने देखी आपके स्टूडियो में भी है जी। तो इसी तरह जो भी चीजें हमको मिलती हैं उन चीजों को अपने, ताकि हम उस माहौल में रहें, भले ही ये मेक बिलीव माहौल हो, लेकिन वो माहौल हमारे साथ बरकरार रहे, क्योंकि उस माहौल से हमारी नींव पड़ी है, उस माहौल में हम पले हैं, जन्मे हैं, सांसें ली हैं, तो उन सांसों को हम, अपनी सांसों को बरकरार रखना चाहते हैं इस माहौल में जो हम नया क्रिएट करें, रादर रिक्रिएट कर रहे हैं अपने लिए। तो ये मेरे ख्याल में, मुझे नहीं लगता हमसे, जैसे मैंने पहले भी आपसे एक प्रोग्राम में बोला था, यू कैन टेक समबडी आउट फ्रॉम कश्मीर बट यू कैन नॉट टेक आउट कश्मीर फ्रॉम समबडी। तो जो कश्मीर हमारे अंदर है वो समाहित है और उसमें कोई दो राय नहीं कि हम उससे जुदा हो सकते हैं जी। बल
0: संजीव जी, आप क्या कहते हैं कि जो हमारे अंदर कश्मीर है और जो हमारे परिवार है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी अगली पीढ़ी है, क्या हम ये दर्द उन तक पहुंचा पाए या ये दर्द ऑटोमेटिकली उन तक पहुंचा है?
4: ये दर्द तो मन से निकाल नहीं सकते भरत जी। मैं जब आपके स्टेज चढ़ रहा था, आपने हाक बैगों में वो उगाया है तो वो एक इंडिकेशन है कि किसी भी कश्मीरी हिंदू के मन से आप कश्मीर निकाल नहीं सकते
0: जी।
4: तो वो पॉसिबल नहीं। और ये जनरेशन जो कमिंग जनरेशन हमारी जो नई है, पीढ़ी है, पीढ़ी को ये हमारा बनता है कि उनको संस्कार दे दें और वो भूल ना जाए कश्मीर को। मगर मैं गौरव से ये कहता हूँ कि हमारी जो नई जनरेशन है उनको ज्यादा कश्मीर का दर्द है, तो ये निकल नहीं सकता,
0: ये नहीं निकल सकता।
4: जनरेशन टू जनरेशन मैंने अपने बच्चों के वो उनको ज्यादा मेरे कश्मीर के बारे में ज्यादा, वो मैं बारामूला का हूँ, बारामूला के बारे में ज्यादा उनको क्यूरियोसिटी, वहाँ क्या क्या था, कौन कौन सी फसलें थी और हम कैसे रहते थे वहाँ। तो ये बिल्कुल ही कतई किसी भी कश्मीरी के दिमाग से आप निकाल नहीं सकते जब तक कश्मीरी उसका लिंक है। पर हाँ, इसमें हमारा नुकसान जो हुआ है वो हमारा जो हमारे रिचुअल्स थे, जैसे भरत जी ने बताया कि रिचुअल्स हमारे रूट आउट, वो जब रूट आउट हो जाता प्लांट को ही निकाल देते तो वो मर जाता है। पर हम प्राउडली मैं कहता हूँ मेरे समाज के मेरे जो बुजुर्ग थे जो उन संस्कार उन्होंने हमें दिया है उन रूट्स को हमने जमीन में गाड़ के रख दिया और हम आगे जाके वही चिनार वाला वृक्ष बन जाएंगे, तो वो हम कश्मीर जरूर वापस जाएंगे।

0: श्रोताओं, इस समय हमारे साथ है रोमेश पिंटा। जैसे मैंने कहा कि ये फिल्म मेकर है, इन्होंने कश्मीरी में एक फिल्म बनाई शिहज निंदर। अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूं तो उसका मायने है कि आराम से सो जाना,
1: मीठी नींद,
0: मीठी नींद। जब हम विस्थापित हुए और उसके बाद शायद वो मीठी नींद कभी आ ही नहीं पाई। और मैं चाहूंगा कि मेरे ज्यादा ना बोलते हुए मैं रोमेश जी से ही कहूंगा कि उस फिल्म को जब आपने बनाया और जब हमने देखा, मेरे आंसू नहीं रुक पाए। खास करके जब आप आखिर में अपने घर जाके सोए और फिर आप उठे ही नहीं। क्या कंसेप्ट था? क्या वही है कि कुछ भी हो, कश्मीर हमारे भीतर से नहीं निकल सकता?
2: बिल्कुल सही आपने कहा, मैं यही कहने जा रहा था आपको। देखिए, पहली बात है, कश्मीर को हम बोलते हैं मर्ज कश्मीर, मीन्स माँ। माँ, माँ को भूल सकता है क्या कोई? नहीं। दूसरी बात है, जिस चीज से आप बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, वो हमेशा हमेशा के लिए आपकी आत्मा में बस जाती है। और मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत हम अपनी माँ से करते हैं, कश्मीर के रूप में। यही वजह है, आप मेरी जो भी फिल्म उठाएंगे, जो भी कहानी उठाएंगे, जो भी गाना उठाएंगे, वो सब रिलेटेड टू कश्मीर से मिलेगा आपको। जैसे आपने अभी जिक्र किया शीश चंद्र का, उससे पहले भी मैंने एक फिल्म बनाई थी जो संजीव ने भी जिक्र किया था, रिश्ते जख्म। वो वही है, वो रिश्ते जख्म ही है अभी तक। और शीश चंद्र एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। एक ऐसा शख्स जिसको डेमेंशिया हो जाता है, यानी कि जो भूल जाता सब कुछ, मगर उसको एक ही चीज याद रहती है। ये रियल स्टोरी है, मैं आपको बता रहा हूं। एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, और ये एक बंदे की कहानी नहीं है, हजारों कश्मीरी पंडित जो बुजुर्ग है हमारे, उनकी कहानी है। जगती हमारा टाउनशिप एक है जहां पे कश्मीरी माइग्रेंट्स रहते हैं, वहां पे देखेंगे कितने सारे ऐसे हमारे बुजुर्ग हैं जिनको डेमेंशिया हुआ, मगर उनको अभी भी याद है कि घर जाना है, घर जाना है। जैसे उसमें बोलता है घर छूंगा सुन, घर छूंगा सुन। तो वही वीडियो देख के ही मुझे, मैं बहुत रोया हूं उस वीडियो को देख। उसके बाद उसको एक फिल्म रूप दे दिया था शीश चंद्र, जो काफी लाइक की गई। जैसे आप बोल रहे हो कि देख नहीं पाए आप उसको, क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि आपके अंदर भी वो दर्द है। तो यही वजह है कि वो हर फिल्म मेरी, हर गाना मेरा, हर कोई चीज जो मेरी, कहीं नहीं तो केंद्रित मेरा सिर्फ कश्मीर पे ही रहता। अभी जिसमें आपने भी अभी एक रोल किया, अभी एक फिल्म बनाई है, वो भी कश्मीर पे ही बनाई थी, वो भी कश्मीरी स्टोरी पे आधारित है, वो कश्मीर में शूट किया उसको। तो ये कश्मीर हमारे दिल से, हमारी आत्मा से कभी नहीं निकलेगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि कुछ नहीं तो इस एज में जाके मैं वापस कश्मीर में बस जाऊं, ताकि वो शमशान तो मिले वहां,
0: ताकि आखिरी
2: जो सांस ले लें और हमारी जो जिस्म का धुआं है वो इस फिजा में मिल जाए, वो तड़प न रहे कहीं। मैं अपने बुजुर्गों को देखता था यार, उनकी तड़प होती थी। वो एक ही बात बोलते हैं, जैसे बुजुर्ग बोलते हैं शमशान अगस पानी नहीं आ सकता। वो उनका सबसे बड़ा दर्द होता है कि मतलब जिनका दाह संस्कार किया गया था, वहां मेरा भी दाह संस्कार हो जाए, वो पॉसिबल नहीं था। तो यही मैं आज भी कहता हूं कि यही एक मन की एक आखिरी अभिलाषा है कि यार कम से कम कश्मीर में जाके बस जाए आखिरी टाइम। आपने आज बहुत सारे दर्द उबारे हमारे यार, हम तो यार दोस्त मिले थे कि कुछ आपस में कुछ हंसी मजाक कर रहे, आपने हमें कश्मीर ले लिया। और ये सबसे बड़ा दर्द इस टाइम कश्मीरी पंडितों का है, वो है कश्मीर से बाहर रहना।
0: सभी श्रोताओं को मैं कहना चाहता हूं कि आप इस सामुदायिक रेडियो से कार्यक्रम पंजाबी में सुनते हैं, हरियाणवी में सुनते हैं, हिंदी में सुनते हैं, और आप कश्मीरी संगीत भी सुनते हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम इस सामुदायिक रेडियो से इस समुदाय को भी जोड़ें और उनकी बात आप तक पहुंचाएं। क्योंकि जब मैं यहाँ पर काम कर रहा होता हूँ, वो दर्द मेरे साथ भी होते हैं, पर आज मुझे ये लगा कि हमें इस विषय पर बात करनी चाहिए और इस बात को आप सभी श्रोताओं तक पहुंचाना चाहिए, उसी भाषा में जिस भाषा में आप समझ सकते हैं। मगर संगीत की कोई भाषा नहीं होती है, तो थोड़ी सी बात हम कश्मीरी में भी करते हैं। भारत जी, तभी तो मैं ये वक्त जन तो कश्मीर आयु तो कितने करो पानी जिंदगी शुरू। तो सानियन भोजन वालिंगन, हमारे सभी श्रोताओं के लिए आप कुछ ऐसा गुनगुनाए जो उनके दिल तक वो कुछ बात पहुंच पाए।
3: देखिए, ऐसा जैसे हर एक कश्मीरी पंडित वहां से जब निकला, प्रातः निकाला गया,
1: तो उसके बाद हर एक की अपनी अपनी दिशा रही जिस हिसाब से वो चले गए, आगे चल पड़े। तो मैं भी जम्मू आके फिर मैंने सीधा जम्मू में एक साल रहा और उसके बाद बॉम्बे का रुख किया, जो तब बॉम्बे कहलाती थी, अब मुंबई। तो तब से मैं मुंबई में ही रहा, वहाँ पे कई मीडिया हाउसेस के साथ रहा, जैसे पहले भी हमारी बात हुई है उसके बारे में। मैं इंडियन एक्सप्रेस में रहा हूँ 4-5 साल, फिर उसके बाद जी टी वी से जुड़ा रहा, फिर उनके जी टी वी ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा रहा सिडनी में, और उसके बाद वैसा पिक्चर कंपनी में था और हेड ऑफ एड फिल्म्स, और उसके बाद जो है सीईओ था मैग्ना फिल्म्स का, और उसके बाद अपना प्रोडक्शन हाउस है मेरा वाइड स्क्रीन पिक्चर्स, जहां हम स्टार्ट शुरुआत तो एड फिल्म्स से की है और उसके बाद अब फीचर फिल्म्स की बातें चल रही हैं। फिर अपना ये जो वेब सीरीज होती हैं तो उनका काम चालू है, तो ये सब चीज़ें हमारी इस वक्त चल रही हैं। और उसके साथ साथ अब जैसे देखिए कश्मीर का कनेक्शन छूटता नहीं है, वहाँ पे भी जो भी कहानियाँ मैं क्रिएट करता हूँ, जो लिखता हूँ, जो वेब सीरीज के बारे में बात चली है, जहाँ भी चल रही है अभी एज वी स्पीक, उसमें भी कश्मीर है
0: जी,
1: उसमें भी कश्मीर का माहौल है। प्रॉब्ली दैट विल बी शॉट इन कश्मीर, आई डोंट नो वेयर, कश्मीर या सर्बिया या जहाँ पे भी जो भी हो, उसको छोड़ के फिर कश्मीर की जो चीजें हैं जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, सैफरन है, हनी है, तो मैंने एक ई कॉमर्स पोर्टल भी शुरू कर दिया जो कश्मीर से जुड़ा हुआ है।
0: हाँ।
1: तो उससे मैंने उसका नाम रखा है पश्त।
0: ओके,
2: क्या बात।
1: तो इट्स लाइक pashta.com।
0: ओके,
1: तो वहां से हम लोग कश्मीर की जो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, स्टेपल्स हैं, आपकी हनी है, सैफरन है, वो सब वहां से लाके उसको अच्छी तरह से क्लिनिकली पैकिंग करते हैं और फिर वो उसका वितरण पूरे भारत वर्ष में
0: ऑनलाइन
1: होता है विद ऑल पेमेंट गेटवे एंड एवरीथिंग एल्स लाइक Amazon। सो वो एक अलग आयाम है, एक अलग एक पहलू है उसका। लेकिन मेरा कहने का मतलब अगर आप देखेंगे दोनों चीजों को, चाहे मैं वाइट स्क्रीन पिक्चर्स की बात करूं और चाहे मैं इसकी पश्त की बात करूं, पश्त खैर नाम बहुत लोग बोले भाई ये पश्त समझेगा नहीं, पर मैंने पश्त नाम ही रखना है
2: क्योंकि
1: पश्त मुबारक होता है, ग्रीटिंग होता है, ब्लेसिंग होता है, तो मुझे यही चाहिए। तो इसलिए वो कश्मीर जो हम पहले से बात कर रहे हैं, जैसे रमेश जी बात करें, जैसे संजीव जी ने बात की, आपने बात की, कश्मीर को हम अपने आप से जुदा कर नहीं सकते हैं। तो हम कार्य क्षेत्र में भी, अब मेरे पास एक ये फ्रीडम थी कि इस कार्य क्षेत्र में कश्मीर को लाऊं, वो मैंने लाया
0: जी।
1: कॉर्पोरेट हाउस में नहीं होता, हम यहाँ तो हमारे पास एक फ्रीडम है, तो ये हमने कर दिया क्योंकि वो अंदर का कश्मीर। तो ये रहा और ये सब चीजें चल रही हैं इस वक्त जी।
0: आपने कहा कि आप वेब सीरीज जब लिखते हैं या कोई कहानी लिखते हैं या कोई उसमें गीत संगीत भी होता है कि संगीत के बिना तो हमारी जिंदगी पूरी नहीं हो सकती, अधूरी है जिंदगी, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं के लिए कुछ गुनगुनाएं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर साज नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि वोकली कुछ आप गुनगुनाएं ताकि हम उनको उन फिजाओं में लेके चले, उन बर्फ की चोटियों के भीतर, और उस कुछ भी आप गुनगुनाएं। मुझे पता है कि भारत जी एक ऐसे कलाकार है जिनको हम कहीं पर भी कहें और वो जरूर हमारे लिए
1: इम्प्रॉम्प्टो सा मामला है, बट अब जैसे हमारी बात हुई है अभी कि कश्मीर की जो त्रासदी हुई है, हम अब इतने 35 साल हो गए हैं, लेकिन अब 35 साल तो हो गए हैं, लेकिन अब हमको इसमें कैसे एडजस्ट करना, अपने आप को आगे कैसे बढ़ना है, उसके लिए मैंने एक शेर लिखा था, मैं आपको बता देता हूँ, कश्मीरी में है शेर।
2: क्या बात।
1: मरगस मंश मरग छांडिन, शाह मारन मंश शाल मर।
2: क्या बात।
1: मरगस मंश मरग छांडिन, शाह मारन मंश शाल मर, र छप में चलित छुम करम सुबह सुबह के विचार। तो ये एक पॉजिटिव इसमें से निकलना कि भाई रात का अंधेरा उसको पीछे छोड़ के हम सुबह के एक सुप्रभात जो है सुबह की उसको देखने की कोशिश करें। तो इसमें आप चूंकि बता रहे हैं, थोड़ा गाना भी पड़ेगा मुझे,
0: कुछ गुनगुना
1: ये थोड़ा सा मैंने जैसे तुकबंदी वगैरह करता रहता हूँ थोड़ा। इसमें भी अब यही है कि कश्मीर की बात हो रही है, हम लोग सोपोर में जब रहते थे तो वहां पे जिस मकान पे रहते थे, मकान में, तो वहां पे उसको दमदर कहते थे
0: जी,
1: जो खिड़की के पास एक थ्रेशोल्ड होते थे, तो उस दमदर में जब बर्फ गिरती थी ना बाहर से, तो मैं वो अपने दो दांत उस दमदर लकड़ी का होता उसमें लगा देता था और बर्फ को देखता रहता था। तो उसका थोड़ा सा मैंने तो उसमें बड़ा मजा आता था, जब छोटा बच्चा होता था ना, बड़ा मजा आता था। तो इसको थोड़ा सा गुनगुनाऊंगा मैं, इसको कंपोज भी थोड़ा सा किया था।

0: बहुत सुंदर,
1: क्या बात है भारत जी। और सभी श्रोताओं को मैं कहना चाहूंगा कि जो इस कार्यक्रम का मकसद था वो इन शब्दों के माध्यम से आपके दिल तक हमें पहुंचना था। और ऐसा कहा जाता है कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती है, वो सीधे मुख से लेके हमारे दिल तक पहुंचता है। और जो मेरे हम नाम भारत पंडित जी जो मुंबई से आए हैं, जो उन्होंने अपने शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत किया, वो वही दर्द है जो हम ले रहे हैं अपने मन में, अपने मस्तिष्क में 36 वर्षों से, जब से हमारा विस्थापन हुआ है कश्मीर से। तो हम अगले सेगमेंट में आपसे मिलते हैं, आप बने रहिए, आपको हम एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाते हैं।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विस्थापन का दर्द और ये इस कार्यक्रम का आखिरी भाग है। अभी तक जो हमने अपने दोस्तों से बात की और माहौल ऐसा बना कि जैसे इस समय हम अंबाला कैंट के इस स्टूडियो में नहीं होते हुए हम इस समय पूरा का पूरा ये जो ग्रुप है कश्मीर की उन वादियों में है जहां पर ऊंची ऊंची चोटियों से ठंडी ठंडी हवाएं और चिनार के बीच में क्रॉस करती हुई वो हवा हमारे दिल को छू जाती है। अभी भारत जी से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि एक उन्होंने कॉमर्स पोर्टल बनाया है जिसका एड्रेस है posht.com। स्पेलिंग में आपको बता देता हूँ, posht.com। ये एक ऐसा पोर्टल है जहां पर आप कश्मीर के बारे में जो भी कोई आपको ड्राई फ्रूट से लेके सैफरन तक जो भी कोई चीज आपको चाहिए होगी इस पोर्टल पर वो सब उपलब्ध है। तो आप जरूर विजिट करिएगा posht.com। एक बार फिर एड्रेस बता देता हूँ, posht.com। तो अब हम बात करते हैं संजीव रैना जी के साथ। संजीव जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कश्मीर के बारे में हमने सारी बात की और हमने ये समझ लिया कि कश्मीर तो हमारे अंदर हमेशा रहेगा जब तक हमारी आखिरी सांस है। तो इस समय आप चंडीगढ़ में सेटल्ड है, आप अपनी जिंदगी को आगे की ओर लेके जा रहे हैं, नई जनरेशन को अपने साथ जोड़ रहे हैं। तो इस समय आप अपना समय किस काम के साथ व्यतीत कर रहे हैं और किस तरीके से आप अपने आसपास को भी ग्रो कर रहे हैं जैसे आप ग्रो हो रहे हैं?
1: भरत जी, मैं पहले जॉब में मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ, MBA किया है मैंने। पहली जॉब जो एग्रीकल्चर ऑफिसर किया ज्वाइन किया था कश्मीर में, तो वो मैंने एक दिन नौकरी की, वो नौकरी छोड़ गया। तो उसके बाद मैंने गोदरेज में, मैं डिप्टी जनरल मैनेजर रहा था
0: जी,
1: वो मैंने 25-30 साल वहाँ नौकरी की। उसके बाद लास्ट में मैंने एक असाइनमेंट लिया था, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर था मैं
0: जी,
1: ज्ञान डेयरी लखनऊ
0: जी।
1: तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि बहुत सारी नौकरी होगी तो अपना ही कुछ करें, तो मैंने आई हैव स्टार्ट माई ओन और कंपनी बाई नेम ऑफ नोवासिल एग्री प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें हम पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट करते हैं। जितने भी चंडीगढ़ में और यूपी में, J&K में, दिल्ली में जितनी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे CAGA दिल्ली में, उसको भी हमने भी सर्विस देते हैं। और जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जैसे GMCH सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ का, वहाँ भी हमारा टीम काम करती है। फोर्टीज में है, फोर्टीज जितने भी नॉर्थ इंडिया में 40 हॉस्पिटल्स, वहाँ हमारे काम लोग हैं जो काम करते हैं। तो कुल मिला के अच्छा ये मतलब नाम फॉर सर्विसेज है। इसके अलावा हमारे अपने प्रोडक्ट्स हैं जो हर्बल बेस्ड हैं फॉर डोमेस्टिक इंसेक्ट्स के लिए, जो शहरों में डोमेस्टिक घर में डोमेस्टिक इंसेक्ट्स हैं, रिपेलेंट है, मारते नहीं है। एक एक सेगमेंट, एक अवर डिवीजन है जो मारता है, दूसरा भगाता है। कुछ समाज में वो मारते नहीं है, जैन समाज में, तो उनके जैसे रोडेंट रिपेलेंट
0: जी,
1: लीज रिपेलेंट लिजर्ड के लिए है
0: जी।
1: और एक टेबलेट लिए है, वो उसका विविल्स, जो ड्राई फ्रूट्स में, जैसे हमने बोला भरत जी का ड्राई फ्रूट्स, तो उसमें अगर वो 2 टेबलेट 1 किलो में रखेंगे तो उसमें विविल नहीं आएगी। जैसे आपके चावल में रख सकते हैं, आप अपने दालों में रख सकते हैं, वो उसमें हमने प्रोडक्ट में काम किया। ये नोवासिल एग्री ब्रांच है और हमारा करनाल हरियाणा में भी ब्रांच है, ऑफिस है हमारा, और जम्मू में भी ऑफिस है। तो ये सभी जगह हमारे सर्विस सेंटर्स हैं जो हम पूरे नॉर्थ इंडिया में अभी ऑपरेट करते हैं।
0: आपने पेस्ट कंट्रोल की बात की, तो अगर आपकी कंपनी नोवासिल के साथ कोई कांटेक्ट करना चाहे और उनको पेस्ट कंट्रोल के लिए आपसे संपर्क करना हो तो कैसे संपर्क कर सकते हैं?
1: ये हमारी वेबसाइट है www.novasilagri.com, उस पर पूरा पोर्टल पे आ जाएगा, तो हम वहाँ नंबर भी आ जाएगा, एड्रेस भी आ जाएगा। जैसे ड्राई फ्रूट्स की बात चली या ये क्लॉदिंग की बात चली, उसमें भी हमारा टेबलेट काम आता है। तो सिल्वर फिश एक कीड़ा है जो बुक्स में लगता है और सिल्वर में स्लिक के कपड़ों में लगता है, शॉल में लगता है, उसमें भी आप वो टेबलेट रख सकते हैं। तो इट्स रिलेटेड टू कश्मीर, तो वो दिल मन में वो तो वो चीज रहेगी रहेगी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक संगीत की बात है, आप संगीत के बारे में केवल सुनते हैं या कुछ गुनगुनाते भी हैं?
1: वो अभी मेरे भाई मित्र वर्जी ने बोला, मैं वो
0: चलिए अभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम रोमेश जी से बात करते हैं। रोमेश जी, हमेशा जब भी सोशल मीडिया पे होते हैं तो उनके जो दर्द है, इनके जो रिश्ते जख्म है, वो रिश्ते रहते हैं। तो मैं रोमेश जी आपको भी कहूंगा कि क्या आप हमें, हमारी श्रोताओं को कुछ गुनगुना के कुछ बताएंगे, ताकि वो उस विस्थापन का दर्द है उसको और किसी और शब्दों में समझ पाए।
2: मैं वही आपसे कह रहा हूं ना कि जब भी कुछ लिखता हूं, जब भी कुछ सोचता हूं, तो वो सिर्फ कश्मीर पे ही आ जाता है। तो मेरी जो फिल्म शीज नंद रहे, उसमें एक दो गाने थे उसमें
0: जी,
2: एक संजीव रैना जी की भाभी ने भी गाया था, बहुत ही अच्छा सुंदर गाना था। एक मैंने खुद लिखा था, वो हमारे एक प्रोफेसर साहब ने लिखा था, डॉक्टर उपेंद्रनाथ जी ने। एक मैंने खुद भी लिखा था, क्योंकि वो दर्द वहीं आ रहा था। तो ये गाना सुनाने से पहले मैं, जैसे पहले बताया था कि हम लोग ब्रांड कंज मींस जो हमारे वरंडा के होते थे, धोते थे। एक और चीज होती थी कि शाम को जरूर वहां पे
0: दिया जलाते जला जाता था,
2: संध्या सोंग बोलते थे। उसका भी जिक्र मैंने यहाँ पे किया
0: जी।
2: और बाकी जैसे आपने बोला था शीज नंद मींस मीठी नींद, क्योंकि इसमें कुछ वर्ड्स आएंगे हैं ये कश्मीरी में।
0: मैं अपने श्रोताओं को ये समझाना चाहूंगा कि वहां पर हमारी एक रीत थी, एक प्रथा थी कि शाम होते ही एक दिया जलाया जाता था, और ये माना जाता था कि जो हमारे घर देवता है उनको भी हम नमन करते हैं ताकि वो हमारी रक्षा करें। रमेश जी,

0: ये जो कुछ पलों की शांति थी, ये हमारे दिल की वेदना है, हम सब की वेदना है। इसमें हमारे जो पेरेंट्स है वो इस दुनिया से ये कहते कहते चले गए कि हम घर कब जा रहे हैं, मगर जो जन्मभूमि हमारी थी, मृत्यु के बाद वो शमशान उनको नहीं मिल पाया। हम आज भी प्रण करते हैं कि आज भी हमें आखिरी सांस जो हमारी है वो उसी जगह पर निकले जहां पर हमारा जन्म हुआ है। ये एक बड़ी कहानी की एक शुरुआत है। हम अगर इसको सही शब्द कहें तो ये एक दर्द की एक लंबी दास्तां है, मगर हमेशा ये कहा जाता है कि जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, हमें आगे की ओर देखना है। और अगर कश्मीरी पंडित कम्युनिटी ने ये ना किया होता तो इस समय पूरे विश्व में, हर देश में कश्मीरी पंडित की प्रेजेंस नहीं होती। हम इस कार्यक्रम का समापन एक पॉजिटिव नोट से करना चाहेंगे। मैं अपने तीनों आमंत्रित मेहमानों से ये पूछना चाहूंगा, आखिर में वो हमारे सभी सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे। संजीव जी,
1: बस देश प्रेम मन में रखना है हम सभी भारतीयों को, और अपने मातृभूमि और अपनी जन्मभूमि का प्यार आत्म मन मन मन रहे, और ये प्रे करके हम करना चाहते हैं कि कश्मीर हम इसी जन्म में जाके वहाँ रहें।
0: भारत जी,
2: मेरा ये मानना है कि जिंदगी के इस सफर में कुछ अच्छे लम्हे भी आते हैं, कुछ बुरे लम्हे भी आते हैं, लेकिन आदमी को हौसला नहीं खोना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और एक बतख की तरह पानी के नीचे पैडल करना चाहिए और ऊपर से एकदम सरलता से, बिल्कुल कुछ ना दिखाई दे जो मेहनत है, जो मेहनत अंदर से हो रही है, और ऊपर आप बड़े हंसते मुंह से इसको झेल के आगे चल के अपनी लाइफ को संवारेंगे, अपने समाज को सुधारेंगे और अपनी जितने भी कम्युनिटी हैं या जितने भी लोग हैं और ह्यूमैनिटी को बहुत अच्छी तरह से आप आगे ले जा सकते हैं, प्यार बांट सकते हैं और प्यार ले सकते हैं। जी
0: रमेश जी,
3: हम आपने सही कहा। सबसे पहली बात यह है कि ये दर्द तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है दर्द, मगर हमने हमेशा ये कोशिश की है कि इस दर्द को अपनी ताकत बनाए। तो यही वजह है कि जैसे आपने खुद बोला, किसी दर्द की वजह से जो हमने ताकत बनाई, उसी ताकत की वजह से आज सारे विश्व में कश्मीरी पंडित बहुत अच्छी तरह सेटल हुए हैं। और यही जो अभी महाराज ने भी बोला, लव ऑल सर्व ऑल, जो अगर आप कहीं पे भी देखोगे, मेरे मोबाइल पे भी देखोगे, ये मेरा मोटिव है, ये मेरी सिर्फ लिख के नहीं है, ये मैं दिल से भी करता हूं, लव ऑल सर्व ऑल। तो दैट्स द मेरी मैसेज है कि हमेशा सबसे प्यार कीजिए और सेवा वो हमेशा कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू। भारत सोपोरी जी, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं
0: जी,
3: हमने तो बहुत कुछ दर्द सुनाया
0: जी,
3: आप खामोशी से सुनते रहे, कुछ तो बोलिए, जो ये दर्द कश्मीर का है उसको आप कैसे बयान करेंगे?
0: रोमेश जी, मैं हर दिन जब भी प्रसारण करता हूँ, मैं सभी श्रोताओं को ये कहता हूँ कि जो कश्मीर का दर्द है,

0: करूं, उनको कश्मीर की संस्कृति के बारे में बताऊं, जो हमारी टीम रेडियो वितस्ता है वो भी कश्मीरी संस्कृति के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञात है, या जो हमने वेथ थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी के माध्यम से हमने जो नाटकों का मंचन किया है उसमें भी हमने कश्मीरी फोक पर आधारित नाटक किए हैं। भाषा बेशक हिंदी रही है पर हमने लोगों को वहां भी अपने दर्द के साथ जोड़ा है और उनके दर्द को भी हमने समझा है। जहां तक एक और बात है, जब हमने इस संस्था को बनाना था तो नाम क्या रखना था, तो नाम हमने व्यथ थिएटर ग्रुप रखा, क्योंकि व्यथ हमेशा सदियों से चलती आ रही है। व्यथ को ही संस्कृत में वितस्ता कहते हैं और हम हमेशा कहते हैं कि आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। जिस तरीके से व्यथ की रवानी है उस तरीके से मैं चाहता हूं कि हमारे सभी अंबाला वासियों और हमारे देश के वासियों की जिंदगी ऐसे ही रवां चलती रहे। दुख तकलीफें तो आती रही है, आते रहेंगे, आगे भी आते रहेंगे, पर उसी में से आप प्रभु का शुक्रिया करें, जो हमारे गुरुजी रमेश मराठा जी कहते हैं कि हमेशा शुक्रिया जिंदगी बोलना चाहिए। जिंदगी में जो भी कुछ हमारे पास है उसी पे हमें संतुष्ट रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम का करता हूँ समापन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ रहने के लिए, हमारी बात सुनने के लिए। आप अपना फीडबैक हमें जरूर भेजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: थैंक यू भारत जी, वंस अगेन जय हिंद।
2: थैंक यू भारत जी, जय हिंद।
3: भारत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें आमंत्रण किया इस अपने बहुत से खूबसूरत स्टूडियो में, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, और काफी जहाँ से शुरुआत आपने की और जहाँ पहुँच गए हैं, हमें वाकई दिल में बहुत बहुत खुशी है। और आप आगे भी तरक्की करें और रेडियो वितस्ता बस ऐसे ही गूंजते रहे फिजाओं में और बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे तक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम पहुँचाएं और बहुत अच्छी बातें पहुँचाएं, और जिस पॉजिटिविटी के साथ आप इस मकसद को लेकर आके चले हैं उसमें आपकी जीत हो और आप आगे बढ़ें और सब खुश खुशहाल रहें, और बस यही कामना करता हूँ। और आपसे फिर मुलाकात होगी, जब आप फिर बुलाएंगे हम हाजिर हो जाएंगे।
4: थैंक यू भरत जी, जय हिंद।
5: आप सुन रहे थे कार्यक्रम कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का दर्द। आज के कार्यक्रम में आमंत्रित मेहमान थे एक्टर डायरेक्टर फिल्म मेकर श्री रोमेश पंडिता जी, एक्टर डायरेक्टर फिल्म मेकर सिंगर श्री भारत पंडित जी, और व्यवसायी श्री संजीव रैना जी। कार्यक्रम को रिकॉर्ड, एडिट, निर्देशित एवं प्रस्तुत किया भारत सोपोरी ने, सहयोग राहुल अलियान और निया जैन का। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
6: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
7: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
8: नब्बे आशारिया 0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: आपने ट्यून इन किया है सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज हम आपके साथ एक संवेदनशील विषय पर बात करना चाहेंगे जो हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा के सभी सामुदायिक रेडियो के माध्यम से, गाँव वासियों के लिए, सरपंचों के लिए, सभी हरियाणा वासियों के लिए। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और अपने आसपास के वातावरण को बचा के रखिए।
1: एक छोटी सी जिम्मेदारी सबको बचाए।
0: हरियाणा में खुले पड़े बोरवेल एक गंभीर और जानलेवा समस्या बन चुकी है। आए दिन मासूम बच्चे खेलते खेलते इन गहरे गड्ढों में गिर जाते हैं, जिससे न केवल उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है बल्कि पूरे प्रशासनिक अमले की सांसें अटक जाती है। खेतों में बोरवेल को खुला छोड़ना एक प्रशासनिक लापरवाही ही नहीं है बल्कि एक गंभीर अपराध है। सुरक्षा सर्वोपरि। हरियाणा में खुले बोरवेल का खतरा और कानूनी परिणाम। खेतों में सिंचाई के लिए बोरवेल खोदना किसानों की जरूरत है, लेकिन काम पूरा होने के बाद या बोरवेल के असफल होने पर उसे खुला छोड़ देना साक्षात मौत को दावत देने जैसा है। हरियाणा के विभिन्न जिलों से ऐसे कई दर्दनाक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां मासूमों को इन अंधेरे कुओं से निकालने के लिए सेना और NDRF को घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ता है। बोरवेल को बंद रखना क्यों जरूरी है, कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूँ। पहला, मासूमों की सुरक्षा। खुले बोरवेल सबसे बड़ा खतरा बच्चों और मवेशियों यानी पशुओं के लिए होते हैं। खेल कूद के दौरान या घास चरते समय इनमें गिरने का जोखिम हमेशा बना रहता है। दूसरा, मानवीय और आर्थिक नुकसान। एक हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में लाखों रुपए और प्रशासनिक ऊर्जा खर्च होती है। सबसे बढ़कर कई बार घंटों की मशक्कत के बाद भी बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकती है, जो कि एक कभी ना भरने वाला घाव है। तीसरा, सतर्कता ही बचाव है। बोरवेल का काम खत्म होते ही उससे लोहे के मजबूत ढक्कन यानी कैप से ढकना, चारों तरफ कंक्रीट से पक्का करना और कटीली तारों की फेंसिंग करना बेहद जरूरी है। कानूनी प्रावधान और सख्त दंड। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन ने खुले बोरवेल छोड़ने वालों के खिलाफ कड़े रुख अपनाए हैं। अगर कोई अपने खेत या प्लॉट में बोरवेल खुला छोड़ता है तो उसके खिलाफ निम्नलिखित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराएं, जो पहले IPS के नाम से हम जानते थे। पहला, लापरवाही से जान जोखिम में डालना। खुले बोरवेल के कारण किसी की जान को खतरा पैदा करने पर लापरवाही का मामला दर्ज होता है। दूसरा, गैर इरादतन हत्या का मामला। यदि खुले बोरवेल में गिरने से किसी बच्चे या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जमीन के मालिक और बोरवेल खोदने वाली एजेंसी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बोरवेल खोदने से कम 15 दिन पहले जिला प्रशासन यानी DC या सरपंच को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर बोरवेल को तुरंत सील कर दिया जाता है। जमीन मालिक पर भारी प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाता है। हादसे की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव कार्य का पूरा खर्च भी दोषी जमीन मालिक से वसूला जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे कर्तव्य की। एक छोटी सी लापरवाही एक जिंदगी का अंत कर सकती है। यदि आपके आसपास या खेत में कोई ऐसा बोरवेल है जो इस्तेमाल में नहीं है तो उसे तुरंत मिट्टी, मलबे या कंक्रीट से ऊपर तक भर दें। अगर कोई मकान या जमीन मालिक कहने पर भी बोरवेल बंद नहीं करता है तो इसकी सूचना तुरंत अपने गांव के सरपंच, स्थानीय पुलिस या जिला प्रशासन को दें। सजग रहें और किसी मासूम की जान बचाने में अपना योगदान दे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: पर मत छोड़ो, हर घर तक हर गांव तक आए।
1: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

वास्तव में जीवन चलना है, ढलना है, जलना है, रूहों का सफर है, इनके साथ जन्म जन्म के रिश्ते बंधे हैं। कोई चला गया तो कोई जाने की तैयारी में है। समा है 100 बरस का, पर पल भर की खबर नहीं।

क्यों तुम याद आते हो अक्सर इस खामोशी में। जमाने बीत गए, बदलते रहे मौसम, चांदनी रातों में चिनारों की ठंडी छांव तले आंखों में बसते हैं ख्वाब, और कभी इन ख्वाबों की ताबीर हुआ करते थे आप, पर बिछड़ते इन मौसमों के संग ख्वाब भी टूट गए और बिखर गई चांदनी।

पंछियों की टोलियां रवा हैं अपने सफर पे, और दूरानी सफर अपनी परवाज लिए आकाश की बुलंदियों को छूना ही ये अपना लक्ष्य मानते हैं। इनके लिए सरहदें कोई मायने नहीं रखते हैं, इनको बस उड़ने से मतलब है। बादलों में गुम हो जाना शायद इनका मकसद रहता है। फिर धीरे धीरे ये अपना सफर तय कर लौट आते ही जमीन पर इन पीले फूलों के खेतों में शबनमी बूंदों से नहा लेते हैं।

जाना है फलक पर अब, पर मिलोगी शायद तुम वहां, धड़कने ही उदास तुम्हारे बगैर। धड़कने ही उदास तुम्हारे बगैर और चाहती ही बेअसर। अब यहां प्यार चुभता है क्योंकि फासले ही दरमियां, तभी मोहब्बत बेमाने है। सुरीली यादें ही जावेदा जो बह जाती हैं अक्सर मेरे साथ।

चांदनी रातों के बाद एक ऐसी ही सुबह का इंतजार रहता है जो मेरे लिए गुलाबी सुबह बन जाए। आओ, आओ तुम्हें इन बर्फीली हवाओं का एहसास कराएं। चल मेरे साथ कोहसारों के उस पार जहां पल भर के लिए अब मर जाएं।

दोस्त, आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब आज के लिए बस इतना ही, चाहेंगे आपसे इजाजत।

अब बात करते हैं आज के विषय की। आज हमने आपके लिए विषय चुना है समय और उसका महत्व। दोस्तों, समय वो पूंजी है जो हर इंसान को बराबर मिलती है, चाहे वो राजा हो या रंक। फर्क सिर्फ इसी बात का है कि कौन इस पूंजी का सही सदुपयोग करता है और कौन इससे यूं ही गंवा देता है। जो व्यक्ति अपने समय का सही प्रबंधन करना सीख लेता है, वही समाज में सच्चे मायनों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। समय की कद्र करने वाला व्यक्ति ही अनुशासन, जिम्मेदारी और दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ता है और यही गुण उसे समाज के लिए एक प्रेरणा बनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या समय प्रबंधन की यह आदत बचपन से ही डालनी चाहिए या ये गुण बड़े होकर भी अपनाया जा सकता है। सच तो ये है कि दोनों ही रास्ते संभव है, परंतु जो नींव बचपन में पड़ती है वो जीवन भर मजबूत आधार का काम करती है। बच्चों को यदि छोटी उम्र से ही समय की कीमत समझाई जाए, पढ़ाई, खेल, आराम और परिवार के लिए संतुलित समय देना सिखाया जाए, तो यह आदत उनके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। वहीं दूसरी ओर बड़े होकर भी यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से इस दिशा में प्रयास करे, अनुशासन अपनाए, तो देर से ही सही यह परिवर्तन संभव है। बस जरूरी है कि इस आदत को कभी भी अपनाना बंद न किया जाए, चाहे वह बचपन हो या वयस्क जीवन। अब बात करें इसके देश पर पड़ने वाले प्रभाव की। ये तो स्पष्ट है कि जब देश का हर नागरिक समय के महत्व को समझने लगेगा, तो इसका सीधा असर उत्पादकता, अनुशासन और विकास की गति पर पड़ेगा। सरकारी कार्यालयों में समय पर काम होना, विद्यार्थियों का समय पर लक्ष्य प्राप्त करना, उनके एग्जाम्स होना, उद्योग में समय समय का पालन होना, ये सब मिलकर एक ऐसा राष्ट्र बनाते हैं जो कुशल, आत्मनिर्भर और प्रगतिशील हो। जब व्यक्ति समय का सम्मान करता है, तो वो न केवल अपने जीवन को संवारता है, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र की तरक्की में अपना योगदान देता है। यही छोटी छोटी आदतें मिलकर किसी देश को विश्व पटल पर एक साथ सशक्त पहचान दिलाती है। और यही हम आप सभी श्रोताओं से, खास करके अंबाला के श्रोताओं से अनुरोध करते हैं। आपका प्यार और स्नेह जब तक हमें मिलता रहेगा, हम भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे आप सभी के साथ। तो दोस्तों, आइए आज हम ये संकल्प लें कि समय की कद्र करेंगे, उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, उसका सदुपयोग करेंगे और अपने साथ साथ अपने समाज और देश का उज्जवल भविष्य भी बनाएं और उसमें अपना योगदान देंगे। ये था आज का विषय और रोज की तरह चार पंक्तियां आप सभी के नाम। आज की पंक्तियां यूं है, वक्त की कद्र जो करता है वही आगे बढ़ता है। वक्त की जो कद्र करता है वही आगे बढ़ता है। वितस्ता के किनारे बैठकर यह सबक हमें मिलता है। बूंद बूंद जोड़ो तो बन जाता है दरिया, बूंद बूंद जोड़ो तो बन जाता है दरिया, पल पल संवारो तो बन जाता है सुनहरा सवेरा, पल पल संवारो तो बन जाता है सुनहरा सवेरा। जी हाँ दोस्तों, ये थी पंक्तियां आप सभी के नाम। जल्दी से आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 16 सितंबर 2026 बुधवार को जो कार्यक्रम हम आपके लिए लाए वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत होगी 5:58 पर वंदे मातरम से और लाएंगे आपके लिए प्रकाश प्रवाह और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 बजे भक्ति संगीत और कल बुधवार है, कल आप सुनेंगे शब्द और गुरबानी भी। 7:05 पर कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 3 होगा, पेश करेंगे आरजी किरनी। 8:30 बजे सकारात्मक कहानियों का समय एपिसोड 41 सशक्त पत्नी, इस कहानी को प्रस्तुत करेंगे नरेश शर्मा जी। 9:30 बजे फिल्मी किसे एपिसोड 6 काला पत्थर, कल के लिए हमने फिल्म चुनी है, पेश करेंगे राहुल अलियान। और 10:05 पर इनसे मिलिए विद अभिजीत शर्मा, पेश करेंगे भारत सोपोरी। संगीत की सभा

जारी रहेगी। 2 बजे आप सुनेंगे पुनः प्रसारण आपकी फरमाइश का, जो पिछले शुक्रवार को हमने प्रस्तुत किया था। 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 बजे शाम में गजल और 7 बजे पहलू और गीत एपिसोड 9 सावन स्पेशल पेश करेंगे आरजे किरनी, और 8:30 बजे हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है आवारा बादल। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आएंगे और आशा करते हैं कि आप अपना फीडबैक भी हमें भेजेंगे हमारे स्टूडियो के नंबर पर, जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। ये सारी जानकारी जो मैं आप तक ले आया, इसको तैयार किया हमारी टीम रेडियो वितस्ता के कैजुअल अनाउंसर अन्नू ने। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रसारण पसंद आया होगा और इस ने आपके दिन को शानदार बनाया होगा। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा। FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सुनिए हर दिन सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक। कल सुबह तक के लिए शुभरात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।